नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं हिंदी में समाचार। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित

0: आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप समूह स्वर में देश गान सुन रहे थे। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिनकर कंकिनी और वाणी जयराम की आवाज में ये भक्ति रचना।

कुमार गंधर्व के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक रचना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में मीराबाई की ये भक्ति रचना।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में आप सुन रहे थे मीराबाई की रचना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में हनुमान लला की आरती।

इसी आरती के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज सुबह 7:20 पर बुंदेली सुगंध में आप सुनेंगे हरिराम गुप्त की बुंदेली किस्सा संकल्प। फिल्म संगीत होगा 7:30 पर। 8:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से सरोद पर बजाया राग स्वर समीर। 9:00 लोकरंग कार्यक्रम में कलाकार होंगे रामसुमन अहिरवार, एक ही गीतकार। इस कार्यक्रम में आज 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे नुसरत बद्र के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। 10:05 पर पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका होगा, इसमें आप सुनेंगे ओम प्रकाश अग्निहोत्री की वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। आपकी पसंद कार्यक्रम होगा 10:35 पर।

हमारी दूसरी सभा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले होगी, जिसमें आप सुनेंगे 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, 12 बजे और 2:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, 1 बजे महिला कार्यक्रम में श्रेया श्रीवास्तव की वार्ता होगी, मोबाइल का उपयोग लाभ और नुकसान, 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होगी, 2 बजे आप फिर से सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

आज हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे ज्ञान सरोवर। प्रतिभागी होंगे अभय राज सिंह चौहान, रामजीत सेन, श्वेता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, ओम प्रकाश यादव और अनीस कुमार यादव। संचालन विवेक श्रीवास्तव का होगा। स्कोरर होंगे शिवांशु प्रजापति। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:40 पर और रात 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करें।

0: आएंगे शाम 6 बजे। 6:30 पर लोकधारा की कलाकार होंगी पुष्पा देवी अहिरवार। आज शाम 7:20 पर ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घरनी में आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा लोकेश कुमार का काव्य पाठ भी सुनाया जाएगा। आज रात 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुने खेती किसानी।
1: भैया देखो।

0: विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुने खेती किसानी।
1: भैया रो देखो अपने बीज आंगुलो उमदा धरे रहे हैं तो उन समय पे अपना कामया है तो ई मौका पे जो अपना भंडारण करने हैं तो बीज अपना चाहिए कि वे बीज ढंग से सुखा ले फिर भंडारण करें। अनाज की आगामी जरूरत के लाने भंडारित करवा बहुत जरूरी है। भंडारण के अभाव में लाखन टन अनाज की हान होते है भैया। सर्वेक्षण के अनुसार भंडारण में कीड़ा चखरवा और नमी से लगभग 5-8% लो नुकसान होते है। ई नुकसान से अपना बचने हैं। अनाज में कीड़न के प्रमुख कछु ऐसे स्रोत हैं जैसे दलहन भृंग और अनाज को पतंगा कीट भंडारण से ओढ़के खेतन में तेबेरा दानन में अंडा देते हैं और अनाज के गोदामन में पहुंचने के बाद अनुकूल वातावरण मिलवे पे लार्वा अवस्था में बदल जाते हैं। पुराने अनाज में लगे कीट ओढ़के या रेंग के नए अनाज में भी लग जाते हैं। पुरानी बोरियां रहती है तो पुरानी बोरियां हाँ साफ करे बनाई नव अनाज भरवे से उमे भी सो कीटन को प्रकोप हो जाते हैं। अपन ने ज्यादातर जो देखो है कि भंडारण की अच्छी तरह सफाई नहीं करी जात है सो दरानन में अनाज रह जाते है जोन जिसे करत का है कि कीड़ा मकोड़ा खाके अपनी संख्या में बढ़ोतरी करत है। नव अनाज रागवे पे उस में दूषित हो जाते है। गोदावन में नुकसान पहुंचाने वाले कछु ऐसे कीड़ा है। किरण के विकास के लाने 28-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम और अपेक्षित आर्द्रता 70-75% सर्वोत्तम मानी जाते है। इनकी लार्वा और प्रौढ़ावस्थाएं नुकसान पहुंचाती हैं। सूर्णबारी सुरसुरी चावल को घुन और घुन खपरा और पाई डोरा दलहन भृंग अनाज को पतंगा गोदाम को पतंगा ये जो है नुकसान पहुंचाते हैं गोदामन में। किरण से भंडारित अनाज को बचाव अपना करने है अपना हिसाब से भंडारण करने है भैया। खरियाना हाँ साफ सुथरो और उके आसपास जो घास फूस झाड़ी कछु जमी है तो वहाँ अलग करने है। अनाज हाँ गोदाम या घर में रागवे से पहला अच्छी तरह से साफ करके सुखा के और सिरा के 8-10% लो नमी पे भंडारण करने है। अनाज में जो कटे टूटे भय दाने हो तो उन्हें छान के अलग कर दें। साझे अनाज हम भंडारित करें। भंडारण को उचित तरीका ऐसा है कि नाज भरवे वाली बोरी और कुठिया डारिया बंडन हाँ अच्छी तरह से साफ करके रखें और अनाज में कोनो प्रकार को कीड़ा जो है न लग पाए इके लाने अपन उपाय सोचत रहा है उमे कोनो कीटनाशक दवाई न मिलावे। कमरन में गोदामन में नकरिया के पट्टा और बरसाती की सीट पहला बिछावे। उके ऊपर अनाज की भरी भई बोरी या बोरा धरे। अनाज की बोरियां घा गोदाम या कमरा की दीवार से दूर रख। कमरा या गोदाम के रोशनदान खिड़कियां हाँ न खोलें। कमरा या गोदाम में खुलो या ऐसी बिखरो भाव अनाज न छोड़ें। पुरानी बोरियां हाँ काम में लेवे के पहला उन्हें मेलाथियान दवाई के घोल के 10 मिनट लो डुबा के कीट रहित करें। डुबेबे के बाद उन्हें अनाज भरवे के काम में ले आवे। भंडारण में कीड़न के प्रकोप हाँ रोकवे के लाने 1 लीटर मेलाथियान दवाई लेवे 85 सी हा और 100 लीटर पानी में घोर के 3 लीटर घोल प्रति 100 वर्ग मीटर की हिसाब से 15 दिन से। भंडारण में कीड़न के प्रकोप हाँ रोकवे के लाने 1 लीटर मेलाथियान दवाई लेवे 85 सी हा और 100 लीटर पानी में घोर बना के घोर बनाए 3 लीटर घोल प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 15 दिन से अंतराल पे गोदाम की दीवार और फर्श पे छिड़काव करें और भंडार गृह में बोरी और दीवारियां पे फर्श पे छिड़काव करें और भंडार गृह हाँ 8-10 किलोग्राम प्रति 100 घन भंडार गृह हाँ 8-10 किलोग्राम प्रति 1000 घन फुट के हिसाब से EDCT मिश्रण से प्रदूमन करें जिसे छिपे भय कीट और उनके अंडा नष्ट हो जाए। जो गोदाम में कीड़ा उड़द भय पाए जावे तब भंडार गृह हाँ प्रदूमन एल्यूमिनियम फास्फाइड 7 टिक्की प्रति 1000 घन फीट स्थान से करें। इस तरह से जो अपन ने हमारी बताई बातन पे ध्यान दो और भंडार गृह में साफ सफाई राखी और समय पे हिसाब से बीज को भंडारण करो तो अपन को बीज उमदा सुरक्षित धरोहर है जो आगू चल के काम आए और अपना बाजार

0: भाव उमदा मिले, समय पे काम आए, जिसे अपन लाभ हुई।
1: खेती किसानी में अभी आप सुन रहे थे वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर अनुराधा पौडवाल का था, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: बाइबल में एक स्थान पर प्रार्थना के विषय में कहा गया है कि प्रार्थना श्रद्धावान भक्त के हाथ में स्वर्ग के दिव्य भंडारों को खोलने की कुंजी है। प्रेयर इज अ की इन द हैंड ऑफ फेथ ऑफ अनलॉक हेवन्स स्टोर हाउस। प्रार्थना द्वारा मानव निज हृदय को परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रख देता है। आप ये न समझें कि परमेश्वर इसके इच्छुक हैं या वे चाहते हैं कि हम प्रार्थना द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टाएं करते रहें। हृदय अर्पण करने से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम ईश्वर को उसमें प्रविष्ट होने के लिए आमंत्रित करते हैं। चंद्रमा की रश्मियों को लेकर हम अपने नेत्र शीतल करते हैं। ईश्वरीय प्रकाश की दिव्य किरणों को हृदय में प्रविष्ट कराकर हम समस्त कालिमा वासना विकार ईर्ष्या द्वेष मद मत्सर से मुक्त होते हैं। प्रार्थना वो सर्व सुलभ मानवीय साधन है जिसके द्वारा हमारा सहज सीधा परमेश्वर से सानिध्य हो जाता है। प्रार्थना करने का दूसरा अर्थ है परमात्मा से सीधा बातचीत करना, दैवीय तत्व से निकट से संबंध स्थापित करना, अपने आप को तुच्छ पार्श्विक स्थिति से उठाकर उच्च आध्यात्मिक स्थिति में रखना। सच्ची प्रार्थना से मनुष्य में विद्यमान पार्श्विक भावनाएं दुष्प्रवृत्तियां फीकी पड़ जाती हैं। हम अपने अंदर दैवीय शक्ति का अनुभव करते हैं। गुप्त दैवीय तेजो मंडल से हमारे अंदर सात्विक शक्ति का विकास होता है। श्रद्धा से की गई प्रार्थना से अंतरात्मा सशक्त होती है और चित्त एकाग्र होता है। कवियों ने अपनी कविताओं में जिन प्रार्थनाओं की अभिव्यक्ति की है उनमें आध्यात्मिक प्रेरणा और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भक्त प्रवर तुलसीदास, प्रेम विहल सूरदास जी, भक्ति विहल मीरा, नानक कबीर आदि असंख्य प्रेमी भक्तों ने विविध भजनों के रूप में जो विनय प्रकट की है वो परमेश्वर के दरबार में निश्चित पहुंची है। प्रार्थना का अर्थ है शक्ति के अनंत भंडार से शक्ति प्राप्त करना, प्रेरणा लेना। ईश्वर शक्ति का भंडार है, उसमें तरह तरह की सहायता करने की क्षमता है। वहां से सदैव आशा रखी जा सकती है, सब दशाओं में निर्भर रहा जा सकता है, अंतः प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। अतः जब हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं तब दैवीय शक्ति सहायता के प्रति आपका विश्वास जागृत होकर आत्मबल उत्पन्न होता है। ईश्वर की प्रार्थना से हमें जीवन के यथार्थ मार्ग पर चलने की प्रेरणा और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। संसार में अनेक तमाएं हैं लेकिन प्रार्थना रूपी महाशौच से त्रितापों का सहज निवारण होता आया है। श्रेष्ठ विचारकों के जीवन मंथन का यही निष्कर्ष है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण जीवन में प्रार्थना द्वारा शांति उत्साह प्रेरणा और नवशक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने प्रार्थना की महत्ता के बारे में लिखा है कि प्रार्थना मेरे जीवन का ध्रुव तारा है। एक बार मैं भोजन करना छोड़ सकता हूँ किंतु प्रार्थना करना नहीं। आत्मा को परमात्मा में लीन करने का एकमात्र साधन प्रार्थना ही है। गांधी जी ने प्रार्थना को एक विज्ञान का स्वरूप दिया और स्वयं अपने कल्याण के साथ दूसरों को शांति, मरणासन्न रोगियों को नवजीवन और अदृष्ट सहायता के लिए निरंतर इसी दिव्य माध्यम का प्रयोग किया। सामूहिक प्रार्थना द्वारा गुप्त आध्यात्मिक लहरें फैलाकर उन्होंने जनता में प्रार्थना विज्ञान का संचार किया। प्रार्थना द्वारा जब भक्त प्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है और ईश्वर को ही एकमात्र शक्ति का आधार मानता है तब उसमें आध्यात्मिक बल का प्रादुर्भाव होता है। जब आप विनम्र भाव से गदगद हो प्रभु को आत्मसमर्पण करते हैं तब गुप्त रूप से आप दैवीय तत्वों से अपना निकट संपर्क स्थापित कर आत्मिक उन्नति करते हैं। संकट और विपत्त में आस्था और विश्वास से प्रभु की आराधना ही एक सहारा होती है। अतः दिन का प्रारंभ प्रार्थना से करें और दिन का अंत प्रार्थना से करें। प्रातःकाल प्रभु के स्मरण से सारा दिन सात्विक विचारों से भरा रहता है और मन सात्विक कार्यों में लगता है। मन वचन और कर्म से मनुष्य अच्छाई की ओर उन्मुख रहता है। रात्रि में सोने के पूर्व प्रार्थना करने से सुख शांति मय निद्रा आती है। यदि आप चारों ओर से निराश हो चुके हैं तब ईश्वर की आराधना एवं प्रार्थना से बल की प्राप्ति हो सकती है।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धनशोधन के पहलुओं की जांच रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे करेंगे शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली की 2 दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। इसके पूर्व कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। क्राउन प्रिंस हॉकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के प्रयास करने चाहिए।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और मध्य क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य हिस्सा लेंगे, जो परिषद में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य तथा राज्यों के बीच आपसी मामलों पर विचार विमर्श कर उनके लिए सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ के बस्तर में बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा, मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और हॉक फोर्स के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश पुलिस को यह सम्मान बालाघाट एवं छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सफल एंटी नक्सल ऑपरेशंस, प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय, मजबूत खुफिया नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रों में सतत अभियान संचालन और सुरक्षा तथा विकास आधारित पुलिसिंग मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए प्रदान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए आगामी 1 जून से 15 दिनों तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा।
2: प्राकृतिक खेती और उसके साथ उर्वरकों का, फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करेंगे। कृषि विभाग ने, आईसीएआर ने फैसला किया खेत बचाओ अभियान चलाने का, और उस अभियान के अंतर्गत हमारे वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और गांव में जो मिट्टी है उस मिट्टी में जो तत्व है उसके आधार

0: पर किसानों को संतुलित खाद डालने की सिफारिश करेंगे। खेत बचाओ अभियान अभी प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसको और संगठित ढंग से हम 1 जून से 15 दिन के लिए पूरे देश में चलाएंगे।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खट्टे करेंगी। सम्मेलन के दौरान आयोजित बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार एवं तकनीकी आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर शासकीय विभाग और औद्योगिक इकाइयों की नवाचार, औद्योगिक विकास, स्टार्टअप एवं तकनीकी आधारित पहल की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के दूसरे दिन 20 मई को सदस्य देश अपने देशों के उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र, नवाचार और युवा उद्यमिता पहल की जानकारी साझा करेंगे। वहीं अंतिम दिन 21 मई को उद्यमिता क्षमता और नेतृत्व विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कल कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित व्हाट्सएप चैटबॉट प्रचार अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आज की महती आवश्यकता है। वहीं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। छठवां राज्य वित्त आयोग 20 एवं 21 मई को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के दौरे पर रहेगा। इस दौरान आयोग स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, पारदर्शिता, गुणवत्ता तथा आर्थिक स्वावलंबन के संबंध में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करेगा। आयोग की टीम आज शाम ग्वालियर पहुंचेगी। आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, सदस्य के सिंह तथा सदस्य सचिव वीरेन्द्र कुमार कल ग्वालियर में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इससे पहले कल के हुए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने 3 विकेट और साकिब हुसैन ने 2 विकेट लिए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से हॉकी इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को हॉकी का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खट्टे कल आगरमालवा जिले के प्रवास पर जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी के दर्शन करेंगी। धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं रेलवे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने कल कलेक्ट्रेट कार्यालय में मृत शासकीय कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 5 वर्ष के वेतन के बराबर राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। गुना जिला प्रशासन की सहभागिता से गेल विजयपुर संयंत्र में कल दोपहर 3:30 पर संयुक्त रूप से ऑफ साइट आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कटनी कलेक्टर ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पुनर्वास के लिए जिले में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया है। इंदौर में प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक अब वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी। डिंडौरी में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के प्रचार प्रसार के लिए एलईडी प्रचार रथ को रवाना किया गया। और एनटीपीसी विंध्याचल में आयोजित विंध्याचल प्रीमियर लीग में विंध्याचल वॉरियर्स ने विंध्याचल स्ट्राइकर्स को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचेंगे, व्यापार और निवेश को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश परिषद की बैठक आज बस्तर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी होंगे शामिल। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमता कार्य समूह का सम्मेलन। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से करेंगे शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक।
1: हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बुंदेली सुगंध, इस क्रम में लीजिए, हम आपको सुना रहे हैं हरिराम गुप्त की बुंदेली किस्सा संकल्प।
2: सबके सामने है एक किस्सा संकल्प। एक को नाम हतो घनश्याम, पर गरीबी में सवई जने मजूरन की तरह से देखस, सुबह कल लगे घनसोली। घनसोली रहन वालो तो हतो चबरुगा को, पर ससुराल में को न हतो, सो उतई 5 बीघा जमीन उकी घरवारी पार्वती के नाव आ गई। तवई से वो अपने ससुराल कुदारी में जाके बस गयो। 5 बीघा घर की हती और 5-7 बीघा दूसरे की बटाई पे जोत ले तो टाइम बड़े मजे से कट जातो। तो कछुद्रन में एक मोड़ा भाव, सो बड़े धूमधाम से उत्सव मनो और मोड़ा को नाव धरो रामदास। धीरे धीरे जब रामदास पढ़वे लाग भाव, सो एक कुछ दूर स्कूल में नाव लिखा दो। रामदास रोज स्कूल जावे और आके पढ़वे में होशियार रहो, सो उतई से माने धीरे धीरे क्लास बढ़ाउ बढ़ाउ हाई स्कूल पास कर लो। इंटर में पढ़ाउन के लाने घनसोले ने सोची कि लड़का पढ़वे में होशियार है तो काय ना पढ़ावे के लाने बाहर भेज दे। सो पढ़वे के ले आने 7 कोस दूर एक कस्बा के स्कूल में नाम लिखा दो। उतई बोर्डिंग में रहन लगो। इतने घनसोले ने और मेहनत करी ताकि खर्चा पूरा हो सके। 1 साल तो कट गई, पर मेहनत से घनसोले की तबीयत खराब रहने लगी। घनसोले ने हिम्मत नहीं हारी, पर होनी तो होकर राहत कुक्का कर सकत। साल ही भर में वो खटिया से लग गयो। पार्वती ने खूब बाकी सेवा करी, मॉडर्न ने बाकी खूब सेवा करी, डॉक्टर को दिखाओ, पर जो होने हो तो वही होत और घनसोले ठीक ना हो पाए। मोड़ा अलग हैरान के घरे आवे के बाप को देखे के अपनी पढ़ाई करे। 2 काम करे पर बाप को नहीं बचा पाओ वो लड़का। इंटर तो माने अच्छे नंबरन से पास कर लो, अब आगे का करो जाए। इलाज में और दिन तेरी में सब जरो खर्च हो गो। मताई ने सोची मोड़ा पढ़ ले है तो दिन सुधर जाए। सुबह ने 2 बीघा जमीन साहूकार के इतने गिरवी धर दी और मोड़ा को आगे पढ़न के ले आने कानपुर भेज दो। मताई ने 3 बीघा जमीन बटाई पे उठा दी, तासे बागने गृहस्थी चलाई। रामदास ने बीए करके स्टेट बैंक की अफसरी को इम्तहान दाओ, बामे वो पास हो गयो। अब पार्वती के दिना फिर गए, रामदास अफसर हो गयो। सुबह ने 1 ही साल में साहूकार से अपनी जमीन वापस करा ली। अब मताई कहू रामदास के संगे गांव में रहे, कहूं रामदास के संगे जहां वो नौकरी करत तो सोते पहुंच जावे। रामदास की सगाई संबंध के लाने लोग आन लगे। एक मोड़ी मताई को अच्छी लगी, सुबह ने रामदास से पूछी कि बेटा तुम मोड़ी को देख लो, पसंद कर लो। हमें तो देखने में अच्छी लगी। मोड़ा बोलो आप जानो और आपको काम जाने, जैसी तुम ढूंढ दो सो वही अच्छी है। सो भाई मोड़ी से माँ को ब्याह हो गयो। कछुद्रन गांव में रहकर रामदास के संगे बहु फतेहपुर चली आई। साल ही बाद बताई खो पतो लगो कि बहु 2 जी से है। सुबह ने रामदास से कही बेटा बहु को इतना ही भेज दो, बा को 8वो करने और फिर सादे करने, इतना ही भाव का रहेंगे। उसे शहर में को की खो

जाने रामदास ने कही उते इतो इंतजाम नहीं है बताई, पर बहू को उतना ही बुला लो बाने का करती। रामदास ने बहू को भेज दो मताई, सब काम काज बड़ी धूमधाम से माने करो, गांव की नायन और बरार मिलके बच्चा जरन को सब इंतजाम कर लो। पर होनी तो होने, बच्चा हो टेम दाल बच्चा की गली में फंस गई। अब बरार बहुत ही मुश्किल में हो, अब ना तो बहू ऐसी हालत में एक तो जा सके, अब करें तो का करें। वो भाव वही जो नहीं होना चाहिए, तो कि न वो बरार बहू को बचा पाई और न वो बच्चा को बचा पाई। अब सब धरी की धरी रह गई। अस्पताल हो तो बा को सब कुछ काम हो सकत तो, लेकिन मोड़ा ने बाकी दिन तेरे ही करी। और दिन तेरे ही करवे के बाद माने कछु मन ही मन में संकल्प लाओ और लौट के फतेहपुर चलो गो। फतेहपुर जाके जोन कमरा वो 3000 रुपया महीना पे लाए तो सुबाने बाद छोड़ के 300 रुपया को एक कमरा ले लो और हाथ से खाना बनावे और अपने गुमसम रह लगो। वो तो न ढंग से रहो न ढंग से कपड़ा पहनवे को शौक सवाई वाकई खत्म से हो गए। उतर की और अफसर ने कही कि आप तो अफसर हो स्टेट बैंक के, आप जो का कर रहे, आप तो मजे से रहो, दूसरो ब्याह कर लियो, काहे आप हैरान हो रहे खाम खा के लाने। लेकिन वो बोलो कि नहीं भैया, हम तो ऐसे ही रेवो पसंद करेंगे, हम अब वो सदमा दूर नहीं हो पा रहा हूँ। चलो खैर जो कुछ हतो चुहतो, धीरे धीरे माने और बढ़ोतरी बाकी भई और वो सबसे बड़ो अफसर बन गयो और वो कानपुर पहुंच गयो। कानपुर में हेड ऑफिस हतो जो दफ्तर, लेकिन उतो बा को मन माने कही के 400-500 से 800 रुपया में बने कमरा ले लो और बड़ी ढंग से रन लगो। कछु दिन बाद लोगों को पतो परो कि गांव में जिते बा को खेत है तो उते बड़ी पैमाने की ऊपर काम हो रहो। लोगों ने जानकारी करी कि ते काहन वालो है गो, तो मालूम परो कि रामदास ने धीरे धीरे करके 1 करोड़ रुपया जोड़ लो तो वो कछु स्टेट बैंक से लोन ले लो। माने तो संकल्प ही जो करो तो कि जब गांव में एक अस्पताल बनवाओ रे, काहे हमारी लुगाई जो अस्पताल में कमी की वजह से मर गई, ना मोड़ा बचा पाए न बड़ा घरवारी। खैर अब जो हो सो हो, पूरे आज मुख्यमंत्री महिला अस्पताल की उद्घाटन के लाने आए हैं। उन्होंने अपने भाषण में कही जो सब रामदास को करो धरो है, उन्हें अपनी नौकरी पे सादा जीवन बिताओ और रुपया जोड़ो, माने कछु लोन लेके गांव में जितने औरतन के लाने कोनू अस्पताल की सुविधा ना थी, सुबह ने संकल्प मन में कर लो तो कि हमारी घरवारी अस्पताल की कमी के कारण सुरक्षित हार गई और अब कोनू औरत अस्पताल की कमी के कारण बेमौत नहीं मरे। हमारी भी मुख्यमंत्री की हैसियत से जिम्मेदारी की है कि जब रामदास 1 करोड़ खर्च कर सकत तो सरकारों की जिम्मेदारी है कि जा अस्पताल में 5 महिला डॉक्टर रहे और सब तरह को इंतजाम हुए, उनकी तनख्वाह सरकार दे, इतने गांव तक पक्की सड़क सरकार की तरफ से बनवाई जे और लड़का बिटियन की पढ़ाई के लियाने इंटर कॉलेज सऊ सरकार की तरफ से बनवाओ जे है। गांव वालों ने कही कि रामदास की वजह से जो सब भाव तो बाकी तो तारीफ होनी होनी चाहिए। रामदास के लियाने पूरा स्टाफ रामदास के त्याग के कारण हो रहा। गांव वारन ने मुख्यमंत्री से कही जा अस्पताल को नाव रामदास की घरवाली सावित्री के नाव पे धरो जाए। मंत्री ने बात मान ली और कही कि अस्पताल को नाव सावित्री के नाम से और इंटर कॉलेज को नाम जाके पिता घनश्याम के नाम से रखो जे है। बहू को बहुत बड़ो त्याग है, माने अपने बेटा के पहाड़ के लाने है, कितो त्याग करो कि खुद ही मर गो काम गलत करत। गांव वाले बहुत खुश भाई, सबने बड़के बाग तारीफ करी कि जब मोड़ा के त्याग के कारण जो सब कछु जो गांव में मिलो है, अब हम सबको गांव वालों को कर्तव्य है कि गांव को हम अब आदर्श गांव बनाए और सब तरीका से जामे सुविधाएं धीरे धीरे सरकार से कह के जुटाएं और सबको भलो करें। जय राम जी की।

बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुन रहे थे बुंदेली किस्सा संकल्प। किस्साकार थे हरिराम गुप्त। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। आवाज थी रेशमा की और फिल्म का नाम हीरो। कार्यक्रम लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और सुरेश वाडकर को, फिल्म है एक दिन बहू का। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: AIR at 90.
1: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में? अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है. बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी. वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग. ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते. आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज.
5: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए राजा मेहंदी अली खान की रचना मदन मोहन के संगीत निर्देशन में. आवाज लता मंगेशकर की है. फिल्म का नाम है अनपढ़.

अनपढ़ फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। कार्यक्रम में अब हम आपको शबाब फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतकार है नौशाद और आवाज एक बार फिर से लता मंगेशकर की।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। करके मिली जी, अब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में शक्ति फिल्म का ये नगमा, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे शक्ति फिल्म का गाना। लीजिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश तथा साथियों की आवाज में संतोष आनंद का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है शोर।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के गाए शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

भात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम

0: बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहर स्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। टीईपीए लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योग

0: राष्ट्रपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों

0: से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमरीका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to

बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत पुरएतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है।

0: भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलावामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें की। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निजाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जाम की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
3: कार्यक्रम में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکز کا ملک کے 18 شہروں میں واٹر میٹرو خدمات شروع کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں گوہاٹی کو مرحلہ 1 کے تحت نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ

श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मुशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे उस्ताद अमजद अली खां से सरोद पर बजाया राग स्वर समीर। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज कलाकार हैं राम सुमन अहिरवार, संगतकार हैं ढोलक पर संजय भाटे और बैंजो पर यशपाल। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं एक धुनी भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

AIR@90. कार्यक्रम में लीजिए, अब हम आपको सुना रहे हैं बाबा साहब पर आधारित एक लोकगीत। कलाकार हैं राम सुमन अहिरवार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये कहरवा राम सुमन अहिरवार से, और इन्हीं की आवाज में लीजिए, अब सुनिए रविदास जी पर आधारित ये लोकगीत। संगतकार हैं ढोलक पर संजय भाटे और बैंजो पर यशपाल।
1: अरे महासंत भाई संतन में, ए महासंत।

इसी चेतावनी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे राम सुमन अहिरवार, संगत कर रहे थे ढोलक पर संजय भाटे और बैंजो पर यशपाल। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गीतकार। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गीतकार नुसरत बद्र के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। लीजिए कार्यक्रम की ये पहली पेशकश।

श्रोताओं, एक ही गीतकार कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं नुसरत बद्र के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। श्रोताओं, आपने एक अंदाज तो लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि नुसरत बद्र मशहूर शायर बशीर बद्र के मंझले बेटे थे और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में खूबसूरत से गाने लिखे हैं, जिसका ये नमूना आपने देखा ही है। देवदास फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए भी फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित भी किया गया था। और भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे हैं, लेकिन आज हम उन फिल्मों से आपको गीत सुनवा रहे हैं जो काफी हिट हुए हैं और शानदार लेखनी उनके गानों में रही है। जसपिंदर नरूला की आवाज में दीवानगी फिल्म का गाना अब हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस्माइल दरबार का संगीत है और शब्द रचना नुसरत बद्र की।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे दीवानगी फिल्म का ये गाना, जिसे गाया था जसपिंदर नरूला और साथियों ने। अगर उनकी फिल्मों की बात करें तो देवदास में उनके गाने काफी मशहूर हुए थे और उससे उनको काफी पहचान मिली थी। इसके अलावा उन्होंने सांवरिया, चंदा की डोली, दीवानगी, फैमिली वाला, अधीर, विवेक और अन्य फिल्मों में अपने गीत लिखे। दीवार फिल्म के गाने भी काफी फेमस रहे हैं। दीवार फिल्म का एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सोनू निगम और जीनिया अली की आवाज में। संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

शुदाओ, नुसरत बद्र साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे और जैसा मैंने पहले बताया कि बशीर बद्र के बेटे थे और उनके एक भाई और एक बहन और थे, यानी कि तीन, दो भाई और एक बहन उनके परिवार में थे। दीवानगी फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन इसके पहले उनकी एक गजल के चंद शेर भी आप सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि मेरी खामोश दुनिया को सदा से चोट लगती है, मेरा रिश्ता चरागों से हवा से चोट लगती है, हया है नर्म पलकों में झुका लो प्यार से इनको, बनावट की हया हो तो हया से चोट लगती है, मोहब्बत तो अया होती है आंखों के झरोखों से, मोहब्बत तो अया होती है आंखों के झरोखों से, जबां से जो अदा हो उस अदा पे चोट लगती है। और आखिरी शेर है कि अगर तुम बेवफा हो, अगर तुम बेवफा हो तो नई क्या बात है नुसरत, न करना तुम वफा, मुझको वफा से चोट लगती है। तो आइए, इनका लिखा हुआ दीवान की फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं। संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

0: Vanagi.
1: श्रोताओ, अभी आपने दीवार फिल्म का ये गाना सुना सुनिधि चौहान की आवाज में। और अब एक और खूबसूरत सा गाना देवदास फिल्म का हम सुनवाने जा रहे हैं, जिसे नुसरत बद्र ने लिखा है और श्रेया घोषाल की आवाज है। संगीत इस्माइल दरबार का है। और इस बीच उनका एक शेर और याद आया है। वो लिखते हैं कि वो अगर खानदानी होता तो अपनी औकात पर नहीं आता। मैं मोहब्बत हूं इसलिए नुसरत, धर्म और जात पर नहीं आता। लीजिए सुनिए देवदास फिल्म का ये गाना।

ये गीत आप सुन रहे थे देवदास फिल्म कथा। और लीजिए अब कार्यक्रम के अंत में दीवार फिल्म में हम आपको अलका याग्निक और कैलाश खेर को सुनवाते हैं। श्रोताओं, नुसरत बद्र का देहांत हो चुका है 2020 में, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक से बढ़कर एक शेर लिखे हैं और कुछ तो शेर ऐसे हैं जो कि बहुत ऊपर तक जाते हैं, आध्यात्मिक दुनिया को छूते हैं। वो लिखते हैं कि शाम की मुरली से अजानों तक हर जगह तू ही तू मिला नुसरत। तो ऐसे नुसरत बद्र साहब के गीत हमने आज आपको इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। ये कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं दीवार फिल्म से, लीजिए सुनिए।

0: दीवार फिल्म के इसी गीत के साथ ही एक ही गीतकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज आप सुन रहे थे गीतकार नुसरत बद्र के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे भिंड जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। भिंड जिले में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखा जा रहा है। जिले में जल संरक्षण के लिए पुराने जल स्रोतों के आसपास साफ सफाई की जा रही है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड मेहगांव द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक वन खंडेश्वर मंदिर परिसर स्थित प्राचीन तालाब पर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस मौके पर पक्षियों के लिए पानी के सकोरे भी विभिन्न स्थानों पर टांगे गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रस्फुटन समिति सदस्य, नवांकुर संस्था प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिकों एवं सीएमसीएलडीपी विद्यार्थियों की सहभागिता रही। जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी का कार्य प्रगति पर है। चंबल संभाग के कमिश्नर सुरेश कुमार ने कल भिंड एवं मुरैना जिलों के विभिन्न गेहूं उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप खरीदी एवं तौल तथा अन्य प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि किसानों को खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर छाया, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। भिंड जिले में बीते 5 मई से संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार विकासखंड मेहगांव मुख्यालय पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन शासकीय सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। इस दौरान 5 जून तक शिविर के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में कबड्डी एवं वॉलीबॉल खेलों के साथ साथ योग और व्यायाम कर खिलाड़ियों को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में

कलेक्टर सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में कुपोषण मुक्त भिंड बनाने के लिए ठोस रणनीति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों से प्राप्त आवेदनों पर क्रमानुसार कार्यवाही कर लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी सीडीपीओ को प्रतिदिन फील्ड मॉनिटरिंग करने और सुपरवाइजर को साथ ले जाने के आदेश दिए। सुपरवाइजरों को भी निर्देशित किया गया कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों पर रोजाना पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों की जानकारी लें और रजिस्टर में दर्ज करें। कलेक्टर ने कहा कि अस्पतालों में जन्मे हर बच्चे को डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन हितग्राहियों का आधार कार्ड नहीं बना है उनके लिए विशेष कैंप आयोजित कर आधार बनवाने के आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही एमएम बॉस्क की एंट्री शत प्रतिशत पूर्ण करने पर भी बल दिया गया। उन्होंने मातृवंदन योजना की विस्तृत समीक्षा की तथा सेम मेम बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बैठक के अंत में कहा कि पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना सभी का प्राथमिक दायित्व है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए टीम वर्क जरूरी है। आप सभी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करें। कलेक्टर भिंड की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड, समस्त सीईओ जनपद पंचायतों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों पर गहन समीक्षा की और पूर्ण तथा अपूर्ण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली, जिसमें विशेष रूप से जलगंगा संवर्धन अभियान 2025-26 और 2026-27 के तहत चल रहे खेत तालाब निर्माण पर जोर दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री तथा भिंड जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भोपाल स्थित निवास पर कल भिंड कोर कमेटी की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में भिंड जिले के समग्र विकास कार्यों, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक विषयों को लेकर विस्तारपूर्वक समीक्षा और विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के अनेक प्रमुख जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, विधायक अमरीश शर्मा, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, कामना सिंह भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, संभाग प्रभारी अभय प्रताप, जिला प्रभारी अमीर सिंह पटेल, शैलेन्द्र बरुआ एवं नगरपालिका अध्यक्ष ममता भदौरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। भिंड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसा है, इसे जितनी बार आप प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रेरक विचार के साथ स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका में। आज कार्यक्रम में होंगे कुछ चर्चाएं, सुनवाएंगे वार्ता, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव, होगी विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें, फिल्म संगीत तो होगा ही, लेकिन पहले कर लेते हैं चर्चा हमारे रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान इस विषय पर। दोस्तों, विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं से जुड़ा विषय नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की नींव है। बिल्कुल दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में विज्ञान का अर्थ है दैनिक

0: कार्यों में छिपे वैज्ञानिक सिद्धांत जो जीवन को सरल और कुशल बनाते हैं। सुबह की दिनचर्या प्रारंभ होने से लेकर रात को सोने तक हम विज्ञान से घिरे हैं, जैसे खाना बनाने में रसायन विज्ञान, बिजली के उपयोग, स्मार्टफोन, चिकित्सा एवं परिवहन के साधन। विज्ञान हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसके बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। विज्ञान हमारे जीने के तरीके को सरल बनाकर उसे अधिक उत्पादक और आरामदायक बनाता है। दोस्तों, सुबह की शुरुआत जिन उत्पादों से होती है वे सभी रसायनों के उपयोग से बने उत्पाद हैं। खाना बनाने में प्रयोग होने वाले उपकरण जैसे गैस, गैस स्टोव, माइक्रोवेव, इंडक्शन हीटर आदि, और खाने को सुरक्षित रखने वाले उपकरण रेफ्रिजरेटर सभी विज्ञान की देन है। दोस्तों, दूध से दही का बनना, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल, ये सभी भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। दोस्तों, तकनीक और संचार की बात करें तो स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीविजन विज्ञान की सबसे बड़ी देन है, जो पल भर में हमें दुनिया भर से जोड़ते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के विषय में देखा जाए तो बुखार से लेकर गंभीर बीमारियों तक दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एक्सरे और डायग्नोस्टिक टूल्स सभी विज्ञान के ही परिणाम हैं। दोस्तों, बिजली, परिवहन, चिकित्सा और डिजिटल शिक्षा तक विज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, साथ ही आरामदायक भी। ये नवाचार को भी बढ़ावा देता है, जो कृषि से लेकर अंतरिक्ष अभियानों तक हर क्षेत्र में प्रगति को गति प्रदान करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में परिवहन के साधन, जो कि विज्ञान की ही देन है, हमारी यात्रा को सुलभ बनाते हैं, साथ ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी ही आसानी से पहुंचाते हैं। दोस्तों, धूम्रपान एक ऐसी लत है जो हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाती है। धूम्रपान छोड़ना आनंद त्यागना नहीं, बल्कि जीवन से जहर को त्यागना है। जी हाँ दोस्तों, धूम्रपान न करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है। तो आइए सुनवाते हैं एक वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव इस विषय पर। वार्ताकार है ओम प्रकाश अग्निहोत्री।
1: स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना जीवन का आनंद अधूरा रहता है। स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में अनेक ऐसी बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं, जो मानव स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। धूम्रपान ऐसी ही गंभीर और घातक आदत है। धूम्रपान का अर्थ है तम्बाकू से बने पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि का सेवन करना। आज दुनिया के करोड़ों लोग धूम्रपान करते हैं। कुछ लोग इसे फैशन समझते हैं, कुछ तनाव दूर करने का साधन मानते हैं और कुछ केवल साथियों के प्रभाव के आकर इनकी शुरुआत कर देते हैं। परंतु धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होने लगता है। धूम्रपान केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी इसके दुष्प्रभाव का शिकार बनते हैं। तम्बाकू के धुएं में हजारों हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें अनेक कैंसर उत्पन्न करने वाले तनाव होते हैं। धूम्रपान के कारण हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, कैंसर, श्वास समस्याएं तथा मानसिक तनाव जैसी अनेक बीमारी उत्पन्न होती है। आज धूम्रपान विश्व स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु धूम्रपान से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। इसलिए धूम्रपान के दुष्प्रभावों को समझना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। धूम्रपान वह प्रक्रिया है जिसमें तम्बाकू को जलाकर उसका धुआं मुंह या नाक के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। तम्बाकू में निकोटिन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है, जो व्यक्ति को इसकी लत लगा देता है। धूम्रपान के प्रमुख रूप बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, चिलम, इन सभी माध्यमों से शरीर में हानिकारक रसायन प्रवेश करते हैं। धूम्रपान का इतिहास। धूम्रपान और तम्बाकू का उपयोग प्राचीन समय से किया जा रहा है। अमेरिका के आदिवासियों लोग तम्बाकू का प्रयोग धार्मिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए करते थे। बाद में यूरोपीय देश में इसका प्रभाव हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में धूम्रपान लोकप्रिय हो गया। भारत में भी तंबाकू का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। पहले हुक्का और बीड़ी का चलन अधिक था, लेकिन आधुनिक समय में सिगरेट और ई सिगरेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। धूम्रपान में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व, तंबाकू के धुएं से लगभग 7,000 से अधिक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से कई अत्यंत विषैले होते हैं। प्रमुख

हानिकारक तत्व निकोटिन, यह नशीला पदार्थ है जो तल उत्पन्न करता है। टार, यह फेफड़ों में जमकर कैंसर का कारण बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है। अमोनिया, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। आर्सेनिक, यह विषैला तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान के कारण, फैशन और दिखावा, कई युवा धूम्रपान को आधुनिकता और स्टाइल का प्रयोग मानते हैं। दोस्तों का प्रभाव, साथियों के दबाव में आकर कई लोग धूम्रपान शुरू कर देते हैं। तनाव, कुछ लोग तनाव कम करने के लिए धूम्रपान करते हैं। विज्ञापन और फिल्म, फिल्मों और सोशल मीडियाओं में धूम्रपान को आकर्षक रूप में दिखाया जाता है। जिज्ञासा, कई किशोर केवल अनुभव लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करें। पारिवारिक वातावरण, यदि परिवार के सदस्य धूम्रपान करते हैं तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान का शरीर पर प्रभाव, धूम्रपान शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ों का प्रभाव, फेफड़े धूम्रपान से अधिक प्रभावित होते हैं। फेफड़ों का कैंसर, धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है। अस्थमा, धूम्रपान अस्थमा के रोगियों की स्थिति खराब कर देता है। सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। टीबी का खतरा, धूम्रपान करने वालों में क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। हृदय का प्रभाव, धूम्रपान हृदय रोगों का प्रमुख कारण है। उच्च रक्तचाप, निकोटिन रक्तचाप बढ़ा देता है। हृदयघात, धूम्रपान से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं में रुकावट, ध्वनियों में वसा जमा होने लगता है। स्ट्रोक, मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। मस्तिष्क का प्रभाव, धूम्रपान मस्तिष्क को कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। प्रभाव, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद। निकोटिन व्यक्तियों को मानसिक रूप से निर्भर कर देता है। पाचन तंत्र का प्रभाव, धूम्रपान पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। मुंह का कैंसर, तंबाकू मुंह और गले के कैंसर का प्रभाव कारण है। दांतों की समस्या, दांत पीले हो जाते हैं और मसूड़ें खराब हो जाते हैं। पेट की बीमारी, अल्सर और गैस की समस्याएं बढ़ती हैं। भूख में कमी, धूम्रपान से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। त्वचा का पर प्रभाव, धूम्रपान त्वचा की सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। प्रभाव, समय से पहले झुर्रियां, त्वचा का रूखापन, चेहरा मुरझाना, त्वचा का काला पड़ना। धूम्रपान व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा दिखाने लगता है। आंखों पर प्रभाव, धूम्रपान आंखों के लिए भी हानिकारक है। प्रभाव, आंखों में जलन, मोतियाबिंद, दृष्टि कमजोर होना। प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव, धूम्रपान शरीर की रोगों प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है, इससे व्यक्ति जल्दी बीमार होता है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव, यह गर्भवती महिला धूम्रपान करती हैं तो उनका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। दुष्प्रभाव, बच्चों का कम वजन, समय से पहले जन्म, गर्भपात, शिशु मृत्यु का खतरा। किशोरों पर प्रभाव, आज युवाओं में धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है। प्रभाव, पढ़ाई में ध्यान की कमी, खेलकूद में कमजोरी, मानसिक तनाव, नशे की अन्य आदतों की संभावनाएं। पैसिव स्मोकिंग, जब कोई व्यक्ति दूसरों को धूम्रपान का धुआं सांस के साथ अंदर लेता है तो उसे निष्क्रिय धूम्रपान कहते हैं। प्रभावित लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, परिवार के सदस्य। निष्क्रिय धूम्रपान को अत्यंत खतरनाक होता है। बच्चों पर प्रभाव, धूम्रपान करने वाले माता पिता के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समस्याएं, सांस की बीमारी, एलर्जी, कमजोर प्रतिरक्षा, फेफड़ों की समस्या। धूम्रपान और कैंसर, धूम्रपान कई प्रकार के कैंसर का कारण होता है। प्रमुख कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर। धूम्रपान का मानसिक प्रभाव, धूम्रपान व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। चिंता, तनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन। निकोटिन की लत मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। धूम्रपान का सामाजिक प्रभाव, धूम्रपान केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। प्रभाव, परिवार में तनाव, आर्थिक नुकसान, सामाजिक दूरी, बच्चों पर गलत प्रभाव। धूम्रपान और आर्थिक प्रभाव, धूम्रपान पर खर्च होने वाले पैसा परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। नुकसान, आय पर अपव्यय, इलाज पर अधिक खर्च, कार्य क्षमता में कमी। गरीब परिवारों में यह समस्या और भी गंभीर है। पर्यावरण पर प्रभाव, धूम्रपान पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रभाव, वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई, कचरे की समस्या। सिगरेट के टुकड़े पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाते हैं। ई सिगरेट और वेपिंग, आजकल ई सिगरेट का चलन बढ़ रहा है। कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं लेकिन यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुष्प्रभाव, निकोटिन की लत, फेफड़ों की बीमारी, हृदय संबंधी समस्याएं।
धूम्रपान छोड़ने के लाभ। यदि व्यक्ति धूम्रपान छोड़ दे तो उसका शरीर धीरे

0: ये धीरे स्वस्थ होने लगता है। लाभ: सांस लेने में सुधार, हृदय रोग का खतरा कम, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाना, कैंसर का खतरा कम होना, ऊर्जा में वृद्धि। धूम्रपान छोड़ने के उपाय: दृढ़ संकल्प, धूम्रपान छोड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति आवश्यक है। परामर्श: डॉक्टर और विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक होता है। परिवार का सहयोग: परिवार और मित्रों का समर्थन महत्वपूर्ण है। व्यायाम: योग और व्यायाम तनाव कम करने में मदद करते हैं। स्वस्थ आदतें: अच्छी दिनचर्या अपनानी चाहिए। सरकार द्वारा उठाए गए कदम: भारत सरकार ने धूम्रपान रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। प्रमुख कदम: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, तम्बाकू उत्पादनों पर चेतावनी चिन्ह, विज्ञापनों पर रोक, जागरूकता अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन धूम्रपान नियंत्रण के लिए विश्व भर में अभियान चलाता है। उद्देश्य: लोगों को जागरूक बनाना, तम्बाकू नियंत्रण नीति बनाना, स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाना। विद्यार्थियों की भूमिका: विद्यार्थी समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या करें? धूम्रपान से दूर रहें, दूसरों को जागरूक करें, स्वास्थ्य शिक्षा फैलाएं, तभी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। तम्बाकू का हर कस जीवन की ओर बढ़ता एक धीमा विष है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। वार्ताकार थे ओम प्रकाश अग्निहोत्री। दोस्तों, जैव विविधता अर्थात जीवन की विविधता से है, जिसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय पेड़ पौधों, जानवरों, कवक और इकोसिस्टम के विभिन्न रूप शामिल हैं। दोस्तों, ये हमारे पर्यावरण का संतुलन, ऑक्सीजन, साफ पानी और भोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक है। जैव विविधता किसी निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में जीवों के विभिन्न प्रकारों की उपस्थिति है। दोस्तों, जैव विविधता प्राथमिक स्तर पर तीन भागों में वर्गीकृत है। आनुवंशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्र इसके अलावा एक और वर्ग है, वो है कार्यात्मक विविधता। दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वैश्विक आयोजन है। पहले इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 22 मई वर्ष 2000 को इसलिए इसे मनाया गया क्योंकि 22 मई वर्ष 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अपनाया गया था। दोस्तों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये दिन पर्यावरण प्रबंधन और प्रकृति की रक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष एक थीम का निर्धारण किया जाता है और वर्ष 2026 की थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। ये विषय जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए जमीनी स्तर के सामुदायिक कार्यों और स्थानीय पहलों के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, वनों की कटाई, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जैव विविधता बहुत तेजी से खत्म हो रही है। जैव विविधता स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, जब पर्यावरण संतुलित हो और चारों तरफ हरियाली खुशहाली हो तो मन चहक उठता है और गीत गाने को कुछ इस तरह मचल जाता है।

दोस्तों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म गीत गाता चल से। गायक सुर थे जसपाल सिंह एवं साथियों के, गीतकार एवं संगीतकार थे रविंद्र जैन। और आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अगली चर्चा की ओर, वैक्सीन कैसे काम करती है इस विषय पर। दोस्तों, वैक्सीन संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर खसरा, पोलियो, टिटनेस जैसी गंभीर बीमारियों को रोकती है। वैक्सीन के जनक है एडवर्ड जेनर, जिन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1796 में दुनिया का पहला सफल टीका विकसित किया था। तो आइए आज इस चर्चा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है। दोस्तों, वैक्सीन शरीर में रोगाणु का मृत हिस्सा यानी कि एंटीजन भेजती है, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली एक बाहरी खतरे के रूप में पहचानती है। इसके बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर उस विशिष्ट रोगाणु से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नामक प्रोटीन बनाती है। श्रोताओं, संक्रमण से लड़ने के बाद शरीर उन रोग जनकों को याद रखता है। यदि भविष्य में वास्तविक सक्रिय वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसे तेजी से पहचान कर खत्म कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वैक्सीन के प्रकारों के उपयोग की।

की। इन प्रकारों का उपयोग टीकों में कमजोर वायरस, निष्क्रिय रोगाणु या एमआरएनए को प्रोटीन बनाने का निर्देश देने में किया जा सकता है। दोस्तों, टीकों का मुख्य लाभ है ये हमें गंभीर रूप से बीमार होने से बचाते हैं। ये प्राकृतिक संक्रमण की एक सुरक्षित नकल है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन संक्रमण की गंभीरता और अस्पतालों में भर्ती होने की संभावना को बहुत कम करता है। और दोस्तों, अब इस चर्चा को देते हैं विराम, क्योंकि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। ये पहली खबर है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई। अंतरिक्ष में 10,000 नए ग्रहों का पता चला है। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 2026 में नासा के टेस टेलीस्कोप के शुरुआती डेटा के पुनर्मूल्यांकन करने पर 10,000 से अधिक नए संभावित ग्रहों का पता चला है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत के 3 किशोर छात्रों ने इमली के बीज से एक ऐसा पाउडर बनाया है जो पानी के माइक्रोप्लास्टिक हटाने में मदद करता है। इस खोज के लिए उन्हें द अर्थ पुरस्कार का एशिया विजेता चुना गया है। इन तीनों छात्रों द्वारा बनाए गए इस पाउडर का नाम है प्लास्टिक, जो पानी में मौजूद छोटे प्लास्टिक कणों को आपस में चिपकाकर बड़े गुच्छों में बदल देता है, जिसे मैग्नेट से हटाया जा सकता है। इस तकनीक को विकसित करने के लिए इन छात्रों को $1,00,000 यानी कि 96 लाख रुपए मिलेंगे। और अब इस खबर में जानकारी कैसलर सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, कैसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष में बढ़ते स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस में मौजूद कचरे से पैदा होने वाली खतरनाक स्थिति है, जब पृथ्वी के चारों ओर मौजूद बेकार उपग्रहों और रॉकेट के टुकड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वे आपस में टकराने लगते हैं। ये चेन रिएक्शन की तरह कार्य करता है। एक टक्कर से निकले सैकड़ों टुकड़े अन्य सैटेलाइट से टकराते हैं और कचरा लगातार बढ़ता जाता है। और श्रोताओं, अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित UTORNL गवर्नर चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस पद के लिए चुना गया है। वे जनवरी 2027 से इस पद को संभालेंगे। ये पद यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेंसी और ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी के संयुक्त कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। और दोस्तों, इस खबर में जानेंगे मैथ्योरिटिकल सोसाइटी की पहली भारतीय महिला फेलो के बारे में। श्रोताओं, इसरो के वैज्ञानिक और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास को द मैथ्योरिटिकल सोसाइटी ने वर्ष 2026 के फेलो के लिए चुना है। इस संस्था के 93 वर्ष के इतिहास में फेलो बनने वाली वे पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। ये फेलोशिप उन वैज्ञानिकों को मिलती है जिन्होंने सौर मंडल की शुरुआत को समझने में विशेष योगदान दिया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। श्रोताओं, 2027 में लॉन्च होगा G20 सैटेलाइट, जो जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम की निगरानी करेगा। और दोस्तों, अब रुक करते हैं अंतिम खबर की ओर। अमेरिका के आर्टिमिस 2 मिशन की वापसी शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 को एक कैप्सूल SLS रॉकेट 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष वैज्ञानिक को लेकर पहली बार पृथ्वी से 4.06 लाख किलोमीटर दूर गया था। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के सबसे सुदूर इलाके की तस्वीर ली। दोस्तों, आर्टिमिस 2 सबसे महंगा मून मिशन है। इसकी कुल लागत 4.09 लाख करोड़ रुपए है। इसमें लगा सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS ही 2.21 लाख करोड़ का है। ओरियन कैप्सूल स्पेसक्राफ्ट की कीमत 1.89 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। श्रोताओं, ये 5 बातें इस मिशन को अद्भुत बनाती हैं। फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी, पहली बार कोई यान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग एक गुलेल की तरह करेगा। चांद के पीछे घूमते वक्त यदि इंजन फेल हुआ तो भौतिकी के नियम उसे पृथ्वी की ओर धकेलेंगे। दूसरा, लेजर कम्युनिकेशन, अपोलो मिशन में संदेश फोटो भेजने के लिए रेडियो तरंगों पर निर्भरता थी। आर्टेमिस 2 में O2O सिस्टम है। इसमें लेजर से 4K अल्ट्रा HD वीडियो
पृथ्वी

पर स्ट्रीम हो रहा है। तीसरी अद्भुत बात यह है रेडिएशन शेल्टर। वापसी में सौर तूफान से बचने के लिए कैप्सूल में एक रेडिएशन शेल्टर है। ये कार्गो स्टोरेज के पास है जहां चालक दल पानी की थैलियों और उपकरणों को कवच की तरह इस्तेमाल करेगा। चौथी अद्भुत बात है मानव शरीर का टेस्ट। इस मिशन में इंसानों के साथ कुछ शैवाल भी भेजे गए थे ताकि गहरे अंतरिक्ष के रेडिएशन का डीएनए पर असर जान सकें। मानव मंगल मिशन में ये मदद करेगा। और पांचवी जो अद्भुत बात है वो टो नहीं होगा कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल के महासागर में उतरते ही नौसेना इसे खींच कर ले जाती थी, लेकिन ओरियन सीधे एलपीडी 17 जहाज के पिछले हिस्से में तैर कर पहुंचेगा। जहाज का ये हिस्सा पानी में डूबा रहेगा। और दोस्तों आर्टिमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन का ऐतिहासिक सफर पूरा कर सुरक्षित लौट आए हैं। कैप्सूल ने ध्वनि से 33 गुना तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इस दौरान हीट शील्ड का तापमान 2760 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कैप्सूल प्रशांत महासागर में तय जगह के पास गिरा। तो श्रोताओं ये तो थी विज्ञान जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है तो अनुमति दीजिए। प्रवक्ता अर्चना जैन, प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति।

अभी आप सुन रहे थे पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती, प्रस्तुति रविन्द्र कुमार प्रजापति की थी। मीडियम वेब पर आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

तो कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे मेजर साहब फिल्म से। आवाजें थी जसपिंदर नरूला, सुदेश भोसले और सोनू निगम की। आदेश श्रीवास्तव का संगीत था और मजरू सुल्तानपुरी का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। विनोद राठौर की आवाज साथ में है और फिल्म का नाम है नाम क्या है। मजरू सुल्तानपुरी की रचना, आनंद मिलिंद का संगीत। और पसंद करने वाले श्रोता मित्रों में ये कुछ पत्र हम तक हैं। चार मीनार चौक कड़ई पड़रिया से दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी। गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी। जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार, आरती, ममता और गोमती। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल। शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। ये अगला पत्र हम तक भेजा है भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। ये हम तक मेल श्रोता मित्रों ने पहुंचाए हैं। इनमें स्टेशन रोड

जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया का मेल हम तक आया है। वहीं गांव हीरा वाली फजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा, विमल गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु ने भी हम तक मेल भेजा है। इसके अलावा रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी ने किशनगंज बिहार से मेल किया है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू का मेल भी हम तक आया है। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े ने हम तक मेल पहुंचाया है। इसके अलावा यह अगला मेल है ग्राम पोस्ट कोना कुस्माड़ सोजना तहसील महरौनी ललितपुर से। लिखने वाले हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश और रानी परी नामदेव। मेल लगातार हमारे श्रोता मित्र हम तक पहुंचाते जा रहे हैं। वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी हमको मेल भेजा है। इसके अलावा हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े ने भी मेल किया है। आदर्शनगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना और निवान शर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। इसके अलावा भेड़ाघाट रोड जबलपुर से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और वेदा सिंह का मेल है। तो लीजिए नाम क्या है फिल्म में हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर और साधना सरगम को।

साधना सरगम और विनोद राठौर को अभी आप सुन रहे थे। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, संगीतकार थे आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम था नाम क्या है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सुना रहे हैं आनंद बख्शी की रचना ललित सेन और समीर सेन के संगीत में। आवाजें श्वेता सेट्टी और ललित सेन की है। फिल्म का नाम है अफलातून। इस गीत के पसंदकर्ता हैं समयलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर राजिम छत्तीसगढ़ से, नेपाल पलेसागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका अनूप, ऋषिका और रॉबिन, बठिंडा रोड डबवाली से राजन नारंग, अंजू और मोहित नारंग। ये लिधौरा जिला टीकमगढ़ से अपरखल से ये पत्र आया है। प्रेम नारायण पुरोहित, अमित, सुमित, साक्षी, कार्तिक, विवेक मिश्रा, पूरनलाल राजपूत और रम्मू मिश्रा का मेल हमारे श्रोता मित्र कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद दूल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने हम तक भेजा है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुजान, अरजान और अबान अब्बासी ने हम तक ये मेल भेजा है। हमारे बहुत सारे मित्र लगातार मेल भेजते रहते हैं और एक क्रम में भेजते हैं जिससे उनके रिपीट होने की आशंका बनी रहती है। तो एक कार्यक्रम में एक बार मेल भेजें, आपका मेल शामिल हो सकता है। हालांकि बहुत सारे मित्र हमें मेल भेजते हैं, ऐसे में कभी कभार कुछ मेल छूट भी जाते हैं या यूं कहें कि ज्यादा होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाते। दतेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने हम तक मेल किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास और जो मेल आए हुए हैं उसमें ग्राम पोस्ट बिरखेरा, हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु, हिमांशु पाल ने भी मेल किया हुआ है। तो लीजिए अफलातून फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए, कार्यक्रम के अंत में हम आपको मृत्युदाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे गाया है दलेर मेहंदी और सुदेश भोसले तथा साथियों ने। समीर की शब्द रचना है, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता मित्र हैं भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता। इसके अलावा हम तक मेल पहुंचाने वाले श्रोताओं में रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश ने भी हम तक अपना मेल पहुंचाया है। इसके अलावा ग्राम लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव ने भी मेल भेजा है। पत्र भेजने वालों में देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, किशन कुमार, जय कुमार और कुमारी साहू, इंद्राणी तथा माया साहू, और एक और ये पत्र हम तक आया है सुंदरखेड़ राजमाता नगर से, जिसको लिखने वाले हैं।

मृत्युदाता फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अपने रेडियो मित्र शिवेंद्र शुक्ला को नमस्कार।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है, 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से होगा।
1: मीटर यानी 1593 किलो हर्ट्स डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।
2: नमस्कार, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोता और रिश्ते तो बहुत से लोगों के होते हैं, लेकिन जीवन में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ते बहुत अलग और खास होते हैं। ये रिश्ते शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते, बस एहसास किए जा सकते हैं। रिश्ते हमें संरक्षित करते हैं, हमारा संबल और मनोबल होते हैं। जी हां श्रोताओं, हमारी जिंदगी में एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाता है, कुछ खास और अनूठा है तुमसे मेरा रिश्ता। ये ऐसा रिश्ता होता है जो समय की कसौटी पर तपकर रूहानी बन जाता है। चाहे बचपन की सहेली हो, पति पत्नी हो, माँ बेटी हो, ननंद भाभी हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसका एहसास गहरा होता है, जिनसे हम दिल की बातें कर पाते हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई खास है तो हमें जरूर बताइए। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660902 और भोपाल का STD कोड, जैसा कि आप जानते हैं, 0755। तो हमें इंतजार है आपके फोन कॉल का। हेलो,
3: नमस्कार।
2: कौन बोल रहे हैं?
3: तुलसीराम जी, आज बोल रहा हूँ मालेगांव से।
2: तुलसीराम जी, जो आज का विषय है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, वो है कुछ खास रिश्ते, कुछ अनूठे रिश्ते। जो आपकी जिंदगी में कोई हो तो आप हमें बताएं।
3: खास रिश्ते?
2: हाँ, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो, जिनसे आप दिल की बातें करते हो, ऐसा।
3: देखो, रिश्ते तो अपने वाले के जो होते हैं ये कमजोर हो जाते हैं
2: जी,
3: लेकिन अपने जो दोस्त के होते हैं, दोस्त
2: जी,
3: ये रिश्ता मैं अच्छा मानता हूँ। मेरा एक दोस्त है
2: जी,
3: मत में
2: जी,

0: उनका नाम आर सी जैन
1: जी हाँ,
0: वो रिटायर पोस्ट मास्टर है, उनकी उम्र है 82।
1: अरे वाह,
0: 82 उम्र है, लेकिन आज भी वो आकाशवाणी से इतने जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी का और उनका रिश्ता इतना पक्का है
1: जी
0: कि बहुत ही पक्का है। वो उनके पास एक मर्फी रेडियो है, मर्फी
1: जी जी
0: मर्फी रेडियो बहुत पुराना रेडियो है, वो आज भी उसको चलाते हैं, उसको अपने दिल से लगा रखते हैं उसके गानों को, पुराने गानों को।
1: तो ऐसे खास दोस्त जो आपके हैं, आप उनसे अपने दिल की बातें करते हैं या आपकी मेंटल मैचिंग है उनसे? जी
0: बिल्कुल, हम मैं तो उनकी दिल की बात करता हूँ,
1: जी
0: मेरे लिए तो मेरा दोस्त का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, परिवार से भी अच्छा है।
1: ऐसा क्या खास था उनमें कि जो आपको इतने करीब ले आया उनके?
0: उनमें ये खासियत थी, वो तो है जैन परिवार से
1: जी जी
0: और मैं हूँ ब्राह्मण परिवार से,
1: जी जी
0: ये दोनों का रिश्ता उन्होंने इतना रखा है कि क्षमा, कोई भी गलती हो
1: जी जी
0: तो वो मेरे क्षमा कर देते हैं।
1: देखिए, ये जो दिल के रिश्ते होते हैं इनमें कोई जात प्यात ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ होता
0: हाँ,
1: है तो एक
0: बिल्कुल सही,
1: अनुभूति, एक
0: सही बात
1: खास
0: बोली
1: एहसास, है ना?
0: आपने, बहुत सही बात बोली,
1: जी
0: दिल के रिश्ते होते हैं।
1: जी
0: रिश्ते क्या है कि आजकल रिश्ते कमजोर हो गए मेरे,
1: जी हाँ ऐसा तो है, लेकिन कुछ रिश्ते अभी भी हैं जो अपन को सुकून देते हैं।
0: अपन बोलते हैं कि जो अपना पड़ोसी होता है वो परिवार होता है,
1: जी जी
0: लेकिन आज परिवार नहीं पड़ोसी बन गए।
1: बिल्कुल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमने जाना कि आपके पास भी कोई खास है जिससे आप दिल की बातें करते हैं। फोन करने
0: बिल्कुल,
1: के
0: मेरे
1: लिए
0: लिए आर सी जैन है,
1: जी जी
0: नीमच में रहते हो
1: जी जी
0: और रिटायर पोस्ट मास्टर, 82 साल हो।
1: चलिए, इतना लंबा
0: ठीक
1: रिश्ता
0: है,
1: यूं ही
0: आपका
1: बरकरार रहे।
0: शुभ
1: जी,
0: शुभ नाम,
1: मैं अनुराधा बोल रही हूँ।
0: बहुत
1: जी, आपसे बात
0: धन्यवाद,
1: करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: बहुत

0: हेलो
1: जी,
0: जी,
1: वंदे
0: वंदे मातरम। और हम आपको बता दें, हमारे आज का विषय है एक कोई खास रिश्ता, एक अनूठा रिश्ता जो हमारी जिंदगी में किसी का होता है, जो हमारे पास होता है। तो क्या कुछ खास है आपके पास ऐसा कोई?
1: मातरम। जी हाँ,
0: सबसे पहले
1: मेरा
0: आप
1: नाम
0: मुझे एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ। किशन घी वाला जी,
0: किशन जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: घी समझते हैं ना,
0: जी
1: जो
0: जी
1: देसी
0: बिल्कुल।
1: घी जिसके परांठे बनाते हैं आप।
0: हाँ,
1: दमोह
0: तो कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: से।
0: दमोह से।
1: दमोह मालूम है ना
0: जी जी बिल्कुल, जानते हैं।
1: आप कौन बोल रहे हैं
0: मैं
1: ना।
0: अनुराधा बोल रही हूँ और कार्यक्रम है
1: हाँ
0: बात आपकी, गीत हमारे हैं।
1: हाँ जी, जो विषय आपने पूछा है कि
0: जी
1: कोई ऐसा बताएं जो दिल से जुड़ जाता है, कुछ ऐसा
0: जी
1: पूछा है
0: हाँ,
1: ना आपने। हाँ
0: चाहे कोई वो बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत करीब हो, और
1: हाँ
0: इस भीड़ भरी दुनिया में ऐसा कोई खास होना बहुत जरूरी भी होता है ना?
1: हाँ इसमें जी मेरा ये कहना है कि
0: जी
1: अपने आप ही खास बन जाते हैं जीवन में, जीते जीते ना, जो
0: जी
1: आप कह
0: जी
1: रहे हैं ना कि
0: जी
1: खास होना जरूरी होता है, वो अपने आप बन ही जाते हैं खास। मैं चाहे तो अपने मित्र का नाम लूं,
0: जी
1: चाहे तो अपने बेटे का नाम लूं, चाहे तो अपने बहनोई का नाम लूं, कुछ
0: जी
1: ऐसे एक दो नहीं, तीन चार आ गए हैं मेरी जिंदगी में जो
0: जी
1: कि विशेष हो गए हैं, खास हो गए हैं, और जिनको हम हमेशा याद भी रखते हैं और उनका एहसान भी मानते हैं
0: जी
1: कि जिनके कारण हम आज इस योग्य हैं कि एक समाज में अच्छी स्थिति में हैं, समाज में भी, व्यापार में भी और साहित्य में भी थोड़ा
0: जी बिल्कुल
1: बहुत, तो एक जो अपना स्टेटस हमारा बन गया है, तो उसमें बहुत सारे दो चार पांच लोग ऐसे हैं जिनके कारण हम, जिनके सहयोग से, जिनकी मित्रता से
0: जी
1: हम
0: जी
1: इस योग बने हुए हैं। अगर आप कहें तो किसी का नाम लूं।
0: बिल्कुल, आप यदि चाहें बोलना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि
1: जी,
0: ये रिश्ते
1: मेरा मित्र है
0: किसी
1: प्रमोद कुमार सेन, आपके भोपाल का ही है।
0: जी जी
1: वो मेरा जीवन से मेरे साथ पढ़ता रहा है, स्टार्टिंग से, प्राइमरी से,
0: चलिए
1: और आज मैं 77 ईयर्स का हूँ और वो भी 77 ईयर्स का, लेकिन हम लोग बराबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: देखिए ना,
1: हम लोग ने
0: भरोसा
1: एक
0: है
1: दूसरे के पास
0: आपकी इस
1: पहुंच।
0: दोस्ती में, कितना भरोसा है कि इतने लंबे वक्त से आप साथ हैं,
1: जी,
0: और
1: ये
0: ईश्वर से कामना करते हैं कि
1: सत्य
0: आप
1: है।
0: यूं ही आगे तक, जब तक सांसें हैं तब तक साथ रहिए, खुश रहिए, है ना?
1: जी,
0: चलिए,
1: आ, आ,
0: धन्यवाद आपका, आपने
1: आ,
0: कॉल किया।

0: हेलो सजीव फोन इन कार्यक्रम।
1: हाँ जी, हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल
1: नमस्ते।
0: रहे हैं?
1: हाँ जी, मैं श्रीपाद जाकड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। जी
0: जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज का विषय
1: धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि आज हमने विषय रखा है कुछ अनूठा और कुछ खास रिश्ता, जो हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं, एक दो या तीन होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे

0: अब बिरले ही लोग होते हैं ऐसे कि जो मतलब अपने को समझ सकते हैं,
1: जी
0: हाँ, और मतलब समय आने पे वो अपना हाथ थामते हैं,
1: जी
0: मतलब कुछ मतलब संकट आता है तो मतलब वो अपने को दिलासा देते हैं या
1: जी जी
0: फिर जो भी है कोई मदद करते हैं, तो ऐसे लोग जरा कम ही रहते हैं। पर यही अनुभव मतलब हमारे ऐसे है कि मैं एक्चुअली हम एक्चुअली ब्लाइंड है तो।
1: जी जी
0: हेलो,
1: जी जी सुन रही हैं आप, बताइए।
0: तो हमारे मतलब हम यहाँ आश्रम में रहते हैं पुणे में, तो
1: जी
0: अभी तक की लाइफ में जितने भी संकट आए बड़े बड़े, तो ऐसे ऐसे समय में बहुत कम ही लोगों ने हमारा मतलब साथ दिया है, मतलब या
1: जी
0: कम से कम हमारी बात शेयर की है जो जो मतलब समझ सके हैं हम हमको, ऐसी बात है।
1: चलिए, कोई तो
0: तो
1: है लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा होगा जो आपको समय पर आपके साथ
0: हाँ
1: खड़ा
0: जी,
1: होगा।
0: हाँ जी, है ना।
1: जी, चलिए, आपसे बात
0: पर तो
1: करके बहुत अच्छा लगा और आप यूं ही हमें कॉल करते रहें, धन्यवाद।
0: इसमें कोई गाना वगैरह है क्या मैडम जी?
1: जी, ये आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारी, जिसमें हम एक विषय रखते हैं जिससे आपसे बात करते हैं।
0: हेलो,
1: और जी
0: एक सेकंड,
1: जी
0: इसमें तो ये कल हमको सुनने को मिलेगा ना?
1: जी आप कल सुन सकते हैं, आज जो रिकॉर्डिंग है कल इसे
0: अच्छा
1: ब्रॉडकास्ट करेंगे।

0: हेलो
1: हेलो, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की था हमारे। कौन बोल रहे हैं?
0: जिला मिर्जापुर का मंत्री सभाकांत बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, एक बार फिर से धीरे बताइए।
0: जिला मिर्जापुर गांव से सभाकांत बोल रहे हैं।
1: शिवाकांत
0: जी,
1: शिवाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप
0: जी? हम बहुत अच्छे हैं, इसमें कार्यक्रम सुन रहे हैं, भूख बहुत ज्यादा है।
1: जिला कौन सा बताया आपने?
0: मिर्जापुर।
1: मिर्जापुर
0: जी,
1: जी। आपको हम बता दें कि आज का कार्यक्रम है बात आपकी की हमारे, और इसमें हमने विषय रखा है ऐसा कोई खास जो आपके बहुत पास हो और आप उनसे बहुत। जी जी
0: जी, मैं एक रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं है, एक रिश्ता है घूमने का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता ज्यादा है मेरे।
1: अरे बहुत अच्छी बात है, रिश्ता कोई भी हो लेकिन ऐसा होता है जो हम जिनसे बहुत अपने दिल की बातें शेयर कर लेते हैं।
0: जी जी जी, दोस्तों उसका रिश्ता हम लोग बनाए रखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, और आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी की थी हमारी। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मुन्ना के भट्ट पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से मुन्ना के भट्ट बोल रहे हैं, पलोहवाड़ा।
0: कितने दिनों बाद आपने फोन लगाया?
1: डेढ़ महीना हो गए हूँ मैडम जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: पलोहवाड़ा, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाडरवारा, मुन्ना के भट्ट
0: जी। तो हम आपको बता दें, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ खास विषय पर
1: जी।
0: तो आज का जो विषय है वो है कोई ऐसा खास रिश्ता जो आपके बहुत करीब हो और आप उनसे बात करते हैं अपने दिल की, अपने कभी समस्या हो तो उनसे बात करके आप मतलब शांत हो जाते हैं, अपने मन को शांत कर लेते हैं, या उनका होना आपके लिए बहुत खास होता है। ऐसा है कोई आपकी जिंदगी में रिश्ता?
1: जी मैडम जी, सबसे बड़ा रिश्ता तो दोस्तों का लगता है, दोस्त मामा।
0: रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, माँ बहन, भाई भतीजा, लेकिन आप कोई एक को ऐसा रहता है जो देख के लगता है कि हाँ ये मेरा खास है, या हम इससे बात कर सकते हैं खुलकर, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, या वो
1: जी दोस्ती का रिश्ता लगता है मैडम जी सबसे अच्छा।
0: तो कोई है आपके पास? दोस्ती में भी बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन कोई एक खास?
1: एक दो ऐसे रहते हैं, हृदय अजीज रहते हैं।
0: हाँ, जिनसे लगता है खुश हो जाता है, जिनका आने से ही मन खुश हो जाता है।
1: जी हाँ
0: जी,
1: जिनसे बात या बात करो या ना करो, उसका कहते हैं
0: हाँ, वो तो दूरियां कितनी भी हों लेकिन आप जब उनसे बात करते हैं तो मन खुश हो जाता है, या हमारे बीच में भी भेदभाव नहीं रहता कि वो अमीर है हम गरीब हैं, या कोई भी किसी भी तरह की जो वो रहती है सीमा वो नहीं रहती है ना
1: जी।
0: तो बताए
1: सब कुछ मैडम जी, बचपन में होता है अमीरी गरीबी, तो कोई अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं रहता बचपन में, लेकिन बड़े हो जाते तब वहां दिखाने लगा था अमीरी गरीबी।
0: लेकिन फिर भी कोई तो रहता है ना आपके पास, होगा ऐसा कोई जो आपकी दिल की बातों को समझे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप यूं ही हमसे बात करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।

0: फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं रानी चली छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान बोल रहा हूँ। नमस्ते मैम।
0: राशिद भाई कैसे हैं?
1: एकदम सही, एकदम सही। जब आप लोग आशीर्वाद दें मैम, एकदम सही है।
0: क्या

0: आज हमने जो विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, उसमें है कुछ अनूठा और कोई खास रिश्ता। जैसे कि हमारा
1: बिल्कुल
0: रिश्ते तो बहुत होते हैं, दोस्त भी बहुत होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे हम बहुत, जिसके पास होते हैं हम बहुत। और जी
1: भाई, घर परिवार तो रहते ही है, पर बाकी आप लोग सब लोग हैं, आकाशवाणी है, लोग
0: चलिए,
1: हैं, सब सभी तो खास हैं, तो आप ही
0: नहीं
1: लोग तो सब खास हैं हम लोगों के।
0: नहीं जब कभी हमें तकलीफ होती है तो वो हम उससे बात कर लेते हैं, या उससे कोई राय ले लेते हैं, या वो आकर हमारी बिना किसी शर्त के हमारी सहायता कर लेता है, ऐसा कुछ मैं पूछ रही थी आपसे।
1: हाँ जी बिल्कुल, जो परिवार के बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो उनका सानिध्य जो मिल जाता है तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा परिवार ही हमारा साथ है और खास है, इससे पता चलता है। धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे। हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, सागर से बोल रहा हूँ, चंद्रेश को।
0: सागर से कितने दिनों बाद लगाया चंद्रेश जी?
1: दीदी मेरा तो अब क्या बताऊँ, मैं तो हर 15 दिन में ट्राई करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा मानता हूँ कि 1.5 महीने बाद लगा हुआ होगा मेरा।
0: कैसे हैं आप?
1: बस दीदी आप सबकी दुआएं हैं और आपके यहाँ से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं
0: जी जी,
1: इतनी गर्मी में भी उन कार्यक्रमों को सुनकर एक सुखद एहसास और ठंडक महसूस हो रही है
0: जी। बहुत अच्छा चंद्रेश जी, आज हमने विषय रखा है बात आपकी गीत हमारे में, कुछ ऐसे रिश्ते जो हमारे बहुत खास होते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है तो आप हमें बता सकते हैं?
1: देखिए रिश्ते दीदी क्या है, रिश्ते हमारे बनाने से बनते हैं दीदी, मेरा ऐसा मानना है।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर रिश्तों को अगर हम ज्यादा अहमियत देंगे तो ये मानिए दीदी जी के सामने वाला भी उतना ही हम लोगों को अहमियत देगा
0: जी,
1: क्योंकि आज रिश्ते देखने में ऐसा आ रहा है दीदी कि रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए हो गए हैं दीदी। अब
0: रिश्ते बहुत हैं, दोस्त भी बहुत हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आपकी जिंदगी को खुशी से भर देता है।
1: हाँ दीदी ऐसे तो देखिए मैं विगत करीब 50 या 55 वर्षों से रेडियो आज भी सुनता चला आ रहा हूँ
0: जी।
1: रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से जो हमारे रिश्ते बने हैं
0: जी,
1: वो आज भी हम लोगों के लिए बहुत यादगार हैं, मददगार हैं, और समय समय पर हमें जब कोई परेशानी कोई कठिनाइयां आती हैं तो श्रोताओं के द्वारा हम लोगों को जब वो

0: फोन इन कार्यक्रम बाद आपकी गीत हमारे। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहा है?
1: मैं उपेंद्र चौधरी बात कर रहा था।
0: जी उपेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सिवनी जिले से।
0: सिवनी से। तो हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज हमने विषय रखा है कुछ खास रिश्ते जो हमारे दिल के पास होते हैं। आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप बहुत खास मानते हैं?
1: मैडम ये सबसे पहले तो रिश्ता होता है माँ का,
0: जी
1: उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा कि माँ आपकी हर बात को बहुत समझती है, अच्छे से जानती है।
1: जी
0: जी
1: हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतें पूरी करना माँ के हाथ में रहता है, और वो माँ ही करती है, बाकी कोई नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की दो दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से बातचीत भी करेंगे। छठवां राज्य वित्त आयोग कल से ग्वालियर और चंबल संभाग के दो दिवसीय दौरे पर रहेगा। इस दौरान बैठक में नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत भवन में 22 से 24 मई तक संतवाणी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन शाम को भक्ति संगीत पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तथा मालवा निवाड़ में लू का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको वो गीत सुनाते हैं जो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। आपकी पसंद के गीत हम आपको सुना रहे हैं। फिल्म लम्हे से गीत सुनेंगे लता मंगेशकर और ईला अरुण के स्वर में। गीतिका आनंद बख्शी ने, संगीतकार शिव हरी। फरमाइश हमें आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। अगले श्रोता खंडवा से हैं संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मेरे सनम से। गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले ने, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार ओपी नैयर। फरमाइश इस गीत के लिए आई है जयराज प्लॉट राजकोट से। श्रोता है मधुसूदन, आरती, पूजा, जैस्मीन और प्रयागराज। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अलका याग्निक, अभिजीत और सपना मुखर्जी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुदाई से। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से, श्रोता हैं राजेश, शीतल, राजदीप और राशि। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी से अगला गीत आप सुनेंगे उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी के स्वर में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। फरमाइश में आई है देवरी भाटापारा से। श्रोता है गन्नू लाल, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और श्री गणेश। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म हमराज से, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि। फरमाइश हमें आई है गौतम नगर जिला नांदेड़ से, श्रोता है प्रभाकर और आरती। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

AIR at 90. पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: श्रोतागण को मेरा सप्रेम नमस्कार। पंचतंत्र के मित्र भेद प्रकरण को आप सब सुन रहे हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। संजीवक और पिंगलक की मित्रता को तोड़ने के लिए दमनक योजना बनाता है, जिसके अनुसार पिंगलक संजीवक से युद्ध ना करे और जंगल छोड़कर भाग जाए। दमनक संजीवक को टिकटिब की कथा सुनाता है।
1: किसी समुद्र के किनारे टिटेरियों का एक जोड़ा निवास करता था। कुछ दिनों बाद टिटबी ने गर्भ धारण किया। जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने

0: पति से कहा,
1: कांत, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अतः आप किसी ऐसे स्थान की खोज करें जो निर्विघ्न हो और जहां पर मैं शांतिपूर्वक अपने अंडे दे सकूं।
2: प्रिय, हम समुद्र के किनारे इतने रमणीय स्थान पर रहते हैं, ये जगह हमारी परिचित है। तुम्हारे प्रसव के लिए इससे अधिक उपयुक्त स्थान और क्या होगा? तुम्हें यहीं प्रसव करना चाहिए।
1: आपकी बात मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आया करता है, वो बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाता है, तो हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं नहीं स्वामी, यहाँ से दूर किसी अन्य स्थान की खोज कीजिए, कहीं मेरे बच्चों को यहाँ कोई हानि हो जाए, फिर हम क्या करेंगे?
2: नहीं भद्रे, तुम्हारा कहना ठीक नहीं है।
0: उस समुद्र का सामर्थ्य नहीं, वो मेरे बच्चों को बहा ले जाए।
1: मैं जानती हूँ स्वामी, आप वीर हैं, परंतु समुद्र के समक्ष अपनी वीरता का परिचय दिखाना मूर्खता है।
2: इस तरह शंका करके तुम मेरे प्रेम का अपमान कर रही हो प्रिय।
0: तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो, पराजय और तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग कर कायर शिशु को जन्म देकर यदि स्त्री स्वयं को पुत्रवती समझती है तो बांझ किसे कहेंगे?
3: टिप टिप के अहंकार भरे वचन को सुनकर समुद्र ने सोचा, इस तुच्छ पक्षी को कितना अधिक घमंड है। ये भी है कि आकाश के गिरने की आशंका में टिटहरी अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है। वो सोचता है गिरते हुए आकाश को अपने पैरों से रोक लेगा। तो समुद्र ने उस टिटहरी को सबक सिखाने के उद्देश्य से उसके अंडों का अपहरण कर लिया। जब टिटिबी को प्रसव स्थान खाली मिला, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। अपने पति से बोली,
4: अरे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि यहां से दूर निकल चले, किंतु अपनी मूर्खता और घमंड के कारण तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया।
0: भद्रे भद्रे, क्या तुम मुझे कायर समझती हो? मेरे बुद्धि बल को देखो, अभी अपनी चोंच से इस पापी समुद्र को ही सोख लेता हूँ।
4: परंतु समुद्र के साथ तुम्हारी समता ही क्या है जो उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो? तुम्हारा उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। अपनी तथा शत्रु की शक्ति को जाने बिना ही जो युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाता है, वो आग की ओर बढ़ने वाली पतंग की तरह आत्मविनाश का कार्य करता है।
0: नहीं प्रिय, नहीं, ऐसी बात ना कहो। जिनके पास उत्साह एवं विश्वास रूपी शक्ति है, वे शक्तिहीन होते हुए भी अपने शक्तिशाली शत्रुओं का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। तुम देखना, मैं अपनी चोंच के द्वारा इस पापी समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर इसे शुष्क बना दूंगा।
1: हे कांत, 900 नदियों को लेकर गंगा जिससे सतत मिलती रहती है और सिंधु नदी भी 900 नदियों को लेकर मिलती है, उन 1800 नदियों द्वारा सतत भरे जाने वाले विशाल समुद्र को तुम अपनी चोंच से कैसे सुखा पाओगे?
0: प्रिय, जब तक हिम्मत के साथ कोई अपने प्राणों की बाजी लगाकर पुरुषार्थ करता है, वो लड़ाई भी निष्फल नहीं होती।
1: यदि तुमने समुद्र के साथ विग्रह करने का सोच ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी बुला लो और अपने इष्ट मित्रों को साथ लेकर ही उसके साथ युद्ध करो।
0: अवश्य प्रिय, जो तुम कहती हो वही करूंगा। अपने मित्रों के साथ ही समुद्र का अंत करूंगा। वक्त, सारस, मयूर सभी को बुलाऊंगा।
3: अब अब उस टिटहरी ने अपने सारे साथियों का आवाहन

0: किया, पूरी कथा सुनाई, परंतु सबने ये राय दी कि समुद्र को दंड देने में वो असमर्थ हैं। तभी मयूर ने सलाह दी कि क्यों ना अपने स्वामी पक्षीराज गरुड़ से निवेदन करें। ये सुनकर सभी पक्षियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से गरुड़ के पास जाकर निवेदन किया।
1: महाराज, अनर्थ हो गया, पक्षियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। आप हमारे स्वामी हैं, आपके रहते हुए मुझ जैसे सदाचारी और निर्दोष टिटहरी के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया। यदि यही स्थिति बनी रही तो समुद्र स्वेच्छा पूर्वक अन्य पक्षियों को भी मार ही डालेगा।
2: अरे, तुम लोगों ने इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? मैं तो सोच रहा था तुम सब अपने अपने स्थान पर सुख पूर्वक होगे।
1: नहीं प्रभु, हम सब बड़े दुखी हैं। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए।
2: आप सब निश्चिंत रहें, मैं उस समुद्र को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही उसे सोख डालूंगा।
3: गुरुवर को मेरा प्रणाम।
2: अरे, आप तो श्री भगवान के दूत हैं, कहिए क्या संदेश है?
3: गरुड़ जी, स्वयं नारायण ने मुझे भेजा है। देवों के कार्य से भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
2: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे।

0: भगवान अभी अमरावती जाने वाले हैं, इसीलिए आप शीघ्र चलें।
1: दूत, मेरे जैसे कुभृत्य को रखकर भगवान क्या करेंगे? उनसे जाकर कहिए वो मेरे स्थान पर किसी अन्य वाहन को रख लें, और प्रभु से मेरा प्रणाम भी कह देना।
0: ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर?
1: उचित ही कह रहा हूं। जो स्वामी सेवक के गुणों की कद्र नहीं करता, उसकी सेवा में रहना सेवक की मूर्खता है।
0: गुरुवर, इससे पूर्व कभी भी भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का उच्चारण आपने नहीं किया था। प्रभु ने कब आपका अपमान किया है जो आप इतने विगलित हो रहे हैं?
1: श्री भगवान का आश्रित होने के कारण ही समुद्र ने मेरी प्रजा में से एक टिटेरी के अंडों की चोरी की है। यदि भगवान उसको उचित दंड नहीं देते तो मैं प्रभु की सेवा नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इसलिए आप अविलंब जाकर भगवान से मेरी प्रार्थना कह दें।
2: वत्स गरुड़।
1: भगवान, आप स्वयं उस तुच्छ सेवक के पास आए हैं? मुझे क्षमा कर दें प्रभु, अज्ञानवश मैंने आपका अपमान किया है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे उचित दंड दीजिए।
2: नहीं नहीं वत्स, मैं तुमसे तनिक भी कुपित नहीं हूँ। क्या हमें ज्ञात नहीं कि आप हमारे कितने भक्त हैं? आप मेरे साथ चलें, मैं टिटहरी के अंडों को अविलंब समुद्र से लेकर देता हूँ।
1: जो आज्ञा प्रभु।
3: दुरात्मन समुद्र, तत्काल टिटहरी के अंडों को वापस करो, अन्यथा बाण से तुम्हें सुखाकर बंजर भूमि बना दूंगा।
4: भयभीत समुद्र ने तुरंत अंडों को लौटाकर गरुड़ से क्षमा मांग ली और भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ अमरावती रवाना हो गए। इस कथा को सुनकर संजीवक ने दमनक से कहा,
5: अम्मा मित्र दमनक, ये मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पिंगलक मुझसे रुष्ट है और मुझे मारना चाहता है? वो मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझ पर कभी अप्रसन्न नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो बताओ।
6: भद्र, इसमें जानने की क्या बात है? प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे विश्वास के लिए यही पर्याप्त है कि यदि वो तुम्हें देखकर ब्रिकुटियां चढ़ाकर ओटों को जीभ से चाटे तो समझ लेना वो तुमसे रुष्ट है। इस बात का ध्यान रखना कि पिंगलक को ये खबर ना हो कि मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है। यदि हो सके तो संध्या के समय तक यहां से पलायन कर जाओ।
7: आ गए दमनक भाई? मैं तो चिंता ही कर रहा था।
6: अरे चिंता किस बात की है भैया, जब मैंने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो समझो वो पूरा हो गया।
7: पर दमनक, शीघ्र बताओ तुमने किया क्या?
6: वहां जाकर मैंने भेद नीत का बीजा रोपण कर दिया है।
7: अच्छा,
6: इसके आगे भागे जो करेगा वो होगा। हमने तो अपनी चाल चल दी है।
7: कैसी नीत का बीज डाला तुमने?
6: मैंने अपनी मिथ्या बातों के द्वारा जो भेद डाला है, भविष्य में आप उन्हें एक साथ नहीं देख पाएंगे।
7: ये तुमने ठीक नहीं किया। दोनों स्नेह पूर्वक सानंद रहते थे, आपने उन्हें कोप के समुद्र में फेंक दिया। सच है कि सीधे साधे लोगों को दुख देने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकते। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया, परंतु अब सहमति और समर्थन संभव नहीं।
6: अरे आप नीत शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं।
7: क्या कहते हैं?
6: जो व्यक्ति शत्रु और रोग को उत्पन्न होते ही शांत नहीं करता, वो बाद में पछताता है। क्यों, आपको याद नहीं? हमारा मंत्री पद छुड़ाने वाला

0: वाला भी संजीवक है। मैंने उसे अभयदान देकर पिंगलक के पास पहुंचाया, उसकी मित्रता करवा दी, फिर भी उसने हमें मंत्री पद से हटवा दिया। देव, मैंने विवश होकर उसके वध का उपाय किया है।
1: परंतु दमनक, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
0: मेरे इस उपाय को आपके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं जान पाएगा, आप कोई संदेह ना करें।
1: पता नहीं भैया क्या होने वाला है।
0: करकट जी, आप तो व्यर्थ में घबरा रहे हैं। मेरी माने तो आप महाभोज की तैयारी कीजिए, भोजन के साथ साथ हमें मंत्री पद की भी प्राप्ति होने वाली है। अब इतने सारे लाभ वाले उपायों को मैंने सिद्ध किया है, अपनी मूर्खता के कारण आप इसे समझ नहीं रहे हैं और मुझे दोषी मान रहे हैं।
1: अपने को अत्यधिक बुद्धिमान समझने की भूल मत करो। आगे आगे देखो क्या होता है।
2: अम्मा, ये मैंने क्या कर डाला? स्वयं शाक भक्षी होते हुए भी मांस खाने वाले के साथ मित्रता की और उसका दास बन गया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता। हां, एक उपाय है, पिंगलक के पास चलता हूं, हो सकता है शरणागत समझकर वो मेरी रक्षा करे।
3: ये सोचकर संजीवक पिंगलक के पास गया। पिंगलक को एक चट्टान पर बैठा देखकर डर गया। उसे दमनक की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। पिंगलक ने भी उसे देखा और तत्काल संजीवक पर टूट पड़ा।

पिंगलक के तीखे नखों के आघात से आहत होकर संजीवक ने भी अपने सींगों से उसके उदर को फाड़ डाला। उधर करकट और दमनक छुपकर पूरी घटना देख रहे

0: मूर्ख दमनक, इन दोनों मित्रों में विरोध उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी नीत से स्वामी का विनाश हो रहा है। उनके मरने में अब संदेह नहीं। किस बुद्धि से तुम मंत्री बनना चाहते हो? दंड में विश्वास रखने वाली तुम्हारी बुद्धि व्यर्थ है। नीच पुरुष सिर्फ दूसरों का कार्य बिगाड़ना ही जानते हैं। वैसे तुम जैसे मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ?
1: अब मैं क्या करूं?
0: दूसरों को विपदा में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता। सुनो दमनक, किसी नगर में धर्म बुद्धि तथा पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ थे, परंतु दोनों के नाम के अनुसार स्वभाव में भी बहुत अंतर था। एक बार पाप बुद्धि ने सोचा,
2: हे भगवान, कैसे दिन कटेंगे? मेरे पास तो सुख सुविधा के कोई भी साधन नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेते हैं। मैं मूर्ख और दरिद्र दोनों हूं। क्यों ना विदेश जाकर धन उपार्जन करूं? मैं धर्म बुद्धि को भी साथ ले लेता हूं। ये भी कमाएगा। बाद में इसे ठग कर इसकी भी कमाई ले लूंगा। कल ही मैं उससे बात करता हूं।
3: आज तो आनंद आ गया। वाह, बड़े दिनों के बाद लस्सी बनी है। क्या स्वाद है। वाह वाह।
1: मित्र धर्म बुद्धि, अकेले अकेले ही आनंद ले रहे हो भाई? अपने भाई जैसे मित्र को

0: याद नहीं किया?
1: आओ मित्र, आओ
2: आओ आओ, मैं अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहा था।
0: चलो,
2: मेरी याद आई तो सही। ऐसा ना कहो मित्र, मैं कुछ व्यस्त था, परंतु याद तुम्हें प्रतिदिन करता था। अच्छा, अब छोड़ो, ये लो ठंडी लस्सी पीकर दिमाग को ठंडा कर लो। मित्र पर इतना क्रोध ठीक नहीं।
3: देखो धर्म भाई, इस छोटे से नगर में रहकर यदि हमारा जीवन यूं ही बीत जाए तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे? वृद्धावस्था में किन बातों को याद करेंगे?
2: मित्र, तुम कहना क्या चाहते हो, जरा विस्तार से बताओ।
3: विस्तार से क्या बताना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क्यों ना विदेश चलकर हम दोनों कोई व्यापार करें।
2: बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, एक शुभ मुहूर्त देखकर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम चल पड़ेंगे।
4: और फिर दोनों ने शहर जाकर खूब धन कमाया। धर्म बुद्धि के प्रभाव से इधर उधर घूमकर पाप बुद्धि ने भी खूब धनोपार्जन किया। कुछ माह बाद दोनों अपने कमाए हुए धन को लेकर प्रसन्न एवं उल्लसित मन से घर को लौटने लगे।
3: वाह, धन कमाकर तो आनंद आ गया, पर धर्म बुद्धि के धन को भी अगर हथिया लूं तो क्या बात है।
2: क्या सोच रहे हो मित्र, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो।
3: मैं सोच रहा था इस संपूर्ण धन को लेकर घर चलना ठीक नहीं, कुटुंबजन या भाई बहन मांगने लगेंगे।
2: तो फिर क्या करें पाप बुद्धि?
3: मेरी मानो तो यही घने जंगल में इसे गाड़ देते हैं और थोड़ा सा धन लेकर घर चलें, फिर जब जैसी आवश्यकता होगी धन को खोद कर ले लेंगे।
2: ठीक है मित्र, जैसा उचित समझो करो। आओ, इसके लिए गड्ढा खोद लेते हैं।
3: हाँ।
2: और थोड़ा सा।

0: धन को जमीन में गाड़ने के बाद वे दोनों अपने अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद एक रात को पाप बुद्धि ने वन में जाकर उस गाड़े हुए धन को निकाल लिया और गड्ढे को भरकर चुपचाप लौट आया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि से बोला,
1: मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, धन के अभाव में हम दुखी हैं। चलो उस स्थान पर चलकर कुछ धन खोद लाया जाए।
2: हाँ चलो। हाँ यही तो था।
1: हाँ,
2: यही तो वो पेड़
1: हाँ,
2: है यही खोदो, स्थान खोदो, है खोदो। खोदते हैं।
1: बस बस बस थोड़ा सा और खोद लेते हैं।
2: अरे अरे ये क्या
1: है?
2: ये खींचो खींचो। अरे ये तो खाली है। अरे
3: अरे धर्म बुद्धि, अधिक ढोंग ना करो। इस धन को तुमने ही चुराया है। मैं पहले ही संदेह कर रहा था, ये गड्ढा पहले से ही खुदा हुआ जान पड़ता था।
4: दुरात्मन, ऐसी बात कभी ना कहना। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता हूँ।
3: अरे छोड़, बड़े देखे तेरे जैसे धर्मात्मा, नाम की आड़ लेकर मुझे ठगने की चेष्टा व्यर्थ है। चुपचाप मेरे धन को लौटा दे।
4: पापी, जो धर्म में विश्वास करता है वो दूसरों के धन को धेले के समान जानता है।
3: अपने धर्म को अपने पास रख, शीघ्रता से मेरा धन मुझे दे दे, अन्यथा मैं न्यायालय जाऊंगा।
4: न्यायालय का डर किसे दिखाता है, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलता हूँ।
0: इस प्रकार दोनों व्यक्ति आपस में विवाद करते हुए न्यायालय पहुँचे और परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में ये तय हुआ कि वृक्ष देवता की गवाही ली जाए। पाप बुद्धि ने जब ये बात सुनी तो शीघ्र घर गया और अपने वृद्ध पिता से बोला,
1: पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि के समस्त धन को चुरा लिया है। अगर आप चाहें तो वो धन

0: हमारे पास स्थिर रह सकता है।
1: धन चुराकर तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। अब लग रहा है कि मेरा पुत्र वयस्क हो गया है, परंतु शीघ्र बता कि मुझे करना क्या है जिससे हम उस धन को अपना बना सके।
0: हे तात, कल प्रातःकाल न्यायाधीश गण मुझे और धर्म बुद्धि को लेकर उस वृक्ष के नीचे जाएंगे जहां हमने धन छुपाया था। आपको वृक्ष के कोटर में छुपकर बैठ जाना है और पूछने पर बताना है कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है।
1: ठीक है पुत्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं आज रात में ही जाकर पेड़ के कोटर में छुप जाता हूं।
0: पिताजी, आइए आइए आप सब आइए। ये है वो वृक्ष। आप इस वृक्ष देवता से पूछें, हे वन देवते, आपने तो सब देखा है, आप ही बताएं हम में से चोर कौन है।
2: सज्जनों, आप सब ध्यान से सुने, मेरे नीचे छिपाए गए धन को धर्म बुद्धि ने चुराया है।
3: ये झूठ है, झूठ है, ये नहीं हो सकता।
0: क्या झूठ है? क्या वृक्ष देवता भी असत्य बोलेंगे? अब तो सच सबके सामने आ गया है।
4: उधर न्यायाधीशों ने आश्चर्य से पूरे दृश्य को देखा और सुना, फिर धर्म बुद्धि को चोरी का दंड देने पर विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच धर्म बुद्धि ने शमी वृक्ष के उस कोटर में आग लगा दी।
5: अरे अरे जल गया, अरे मारे, अरे अरे अरे बचाओ, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे जल गया, अरे बचाओ, जल गया।
4: पाप बुद्धि का पिता कराहता हुआ कोटर से बाहर निकल आया। फिर क्या था, पाप बुद्धि से धन छीन कर धर्म बुद्धि को दे दिया गया। अब इस कथा को सुनकर करकट ने दमनक से कहा,
6: दमनक, तुमने पाप बुद्धि की तरह स्वार्थ सिद्धि का उपाय तो सोचा, किंतु होने वाली हानि पर विचार नहीं किया। तुम अत्यंत तुच्छ सोच वाले हो, मेरे निकट आने की चेष्टा मत करना।
4: इधर करकट और दमनक वाद विवाद में व्यस्त थे और उधर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था। पिंगलक के प्रखर नखों के आघात से आहत होने के कारण संजीवक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे निर्जीव देखकर पिंगलक बहुत दुखी हुआ।
7: मैंने निर्दोष संजीवक को मार कर अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं अपनी सभा में सदैव उसकी प्रशंसा करता रहा हूं, अब मैं उन सभासदों के सामने क्या उत्तर दूंगा।
8: देव, आपकी ये नीति अत्यंत कायरतापूर्ण है। आप एक राजद्रोही और शाकाहारी जीव को मारकर इस प्रकार शोक कर रहे हैं, राजाओं को ये बात शोभा नहीं देती।
4: इस प्रकार दमनक के समझाने पर पिंगलक ने संजीवक के मरण संबंधी शोक को छोड़ दिया और फिर दमनक को मंत्री पद देकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। श्रोतागण, पंडित विष्णु शर्मा ने जो 5 प्रकरण बनाए उनमें से प्रथम प्रकरण मित्र भेद यही समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे मित्र संप्राप्ति, परंतु अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का ये 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जो एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इंदौर में आज से ब्रिक्स उद्यमिता कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बैठकों में ब्रिक्स समूह के 5 सदस्य देशों के प्रतिनिधि युवा विकास, उद्यमिता, नवाचार, तकनीक आधारित अवसरों पर चर्चा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनकी पसंद का कार्यक्रम महिला सभा।

आज के महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो स्वीकार कीजिए नीलम तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहनों, हमारा जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा होता है। वैसे तो चुनौतियां सभी के जीवन में होती हैं, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, यही चुनौतियां उनके जीवन में दोगुनी हो जाती हैं। चाहे वो नौकरी कर रही हों या समय और परिस्थिति के अधीन होकर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हों, इन महिलाओं का जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि घर गृहस्थी, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने के साथ साथ इन्हें काम के लिए बाहर भी जाना होता है, तो संघर्ष डबल हो जाता है। घर के काम से फुर्सत होकर समय पर काम पर जाना, आने के बाद फिर से घर के काम करना, बच्चे संभालना, और यदि बच्चे छोटे छोटे हों तो सचमुच ही कामकाजी महिलाओं का जीवन हथेली पर सरसों उगाने के समान हो जाता है। हमारी कुछ बहनें तो सूझबूझ के साथ अपनी ये चुनौतीपूर्ण दिनचर्या अच्छे से व्यवस्थित कर लेती हैं, तो कुछ बहनें जीवन की इन चुनौतियों से परेशान होकर चिड़चिड़ी हो जाती हैं, तो कुछ बहनें गलत रास्ते अपना लेती हैं, और कुछ बहनें अपने जीवन को ही समाप्त करने के बारे में सोचने लगती हैं। तो बहनों, कितने भी संघर्ष हों, कितनी भी चुनौतियां हों, हमें घबराना नहीं है। शांत मन से सही रास्ते पर चलकर

0: आगे बढ़ना है, कोई गलत कदम नहीं उठाना है और ना ही अपने अनमोल जीवन को समाप्त करना है। परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का समाधान हंसकर और डटकर निकालना, जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं है और ना ही मन को निराश करना है। हमारे हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। तो प्रसन्नता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें और हम आपसे मिलते हैं एक अंतराल के बाद।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
0: मैनू, अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आज के समय में हम सभी मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, यदि जरूरत और काम के अनुसार इसका उपयोग सही रूप में करें तो ये लाभदायक है। जरूरत से ज्यादा इसका उपयोग या गलत काम के लिए इसका उपयोग करें तो ये हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। तो आज इसी संबंध में हम आपको ये वार्ता सुनवा रहे हैं जिसका शीर्षक है मोबाइल का उपयोग, लाभ और नुकसान। वार्ताकार हैं श्रेया श्रीवास्तव।
3: 21वीं सदी के प्रारंभिक दशक में तीसरी पीढ़ी के मोबाइल फोन का विकास हुआ। इन मोबाइल फोन को स्मार्टफोन नाम दिया गया। एक स्मार्टफोन बेसिक मोबाइल उपकरण एवं कंप्यूटर का मिला जुला रूप है। स्मार्टफोन में एक साधारण मोबाइल फोन की विशेषताओं के साथ साथ निम्न विशेषताएं भी होती हैं: मल्टीमीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, GPS, टच स्क्रीन, वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट एवं वाईफाई सुविधा, हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा, मोशन सेंसर्स एवं मोबाइल पेमेंट। इन विशेषताओं के कारण अब स्मार्टफोन कंप्यूटर की तरह अत्यधिक उपयोगी हो गया है। अब कंप्यूटर से किए जाने वाले कई कार्य मोबाइल फोन से किए जा सकते हैं। मोबाइल फोन विकास के प्रथम चरण में ब्लैक एंड व्हाइट रंग में सुविधा देने वाले मोबाइल उपकरण विकसित किए गए। मोबाइल फोन तकनीक के विकास का सर्वप्रथम विचार 1947 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में उपजा था। उन्होंने क्रूड मोबाइल के निर्माण का प्रयास आरंभ किया, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा इसे मूर्त रूप देने का कार्य प्रारंभ किया। पहला मोबाइल फोन अमेरिकी कंपनी मोटोरोला के वैज्ञानिक एवं जनरल मैनेजर डॉक्टर मार्टिन कूपर ने विकसित किया। उन्होंने अप्रैल 1973 में पहली बार पोर्टेबल मोबाइल हैंडसेट पर कॉल कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। श्री कूपर को मोबाइल फोन का आविष्कारक माना जाता है। इसके बाद धीरे धीरे द्वितीय पीढ़ी के मोबाइल सेट्स का विकास हुआ, जिनमें रंगीन सेवाएं एवं मल्टीमीडिया तकनीक शामिल हुई। स्मार्टफोन्स में एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त किए जा रहे हैं। स्मार्टफोन में मुख्यतः निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला, एंड्रॉयड। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पहला स्मार्टफोन गूगल कंपनी द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। यह लिनक्स कर्नल पर आधारित है। इसका विकास गूगल के एंडी रूबिन ने किया। दूसरा, iOS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास एप्पल कंपनी ने 2007 में किया था। यह सिस्टम एप्पल कंपनी के आईफोन सीरीज के स्मार्टफोन में प्रयुक्त किया गया। तीसरा, विंडोज फोन। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो माइक्रोसॉफ्ट के स्मार्टफोन्स में प्रयुक्त किया गया। चौथा, ब्लैकबेरी। यह रिसर्च इन मोशन कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ब्लैकबेरी फोन्स में प्रयुक्त किया गया। पांचवा, फायरफॉक्स OS। यह मोजिला कंपनी द्वारा 2012 में विकसित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और छठवा, सिम्बियन। यह नोकिया कंपनी द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह केवल दूर से बातचीत करने का साधन ही नहीं, बल्कि कामकाज, पढ़ाई और मनोरंजन के लिए भी बहुत उपयोगी उपकरण बन चुका है। हम इसके माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं और दुनिया भर की जानकारी कुछ मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं। स्मार्टफोन में कई एप्लीकेशन हैं जो आपके दिनचर्या को आसान बनाते हैं, उदाहरण के लिए कैलेंडर, अलार्म।

0: नोट्स और मैप्स हमें समय और कार्यों का सही प्रबंधन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा फोटो और वीडियो लेने की सुविधा, संगीत सुनना और ऑनलाइन शॉपिंग करना इसे और अधिक उपयोगी बनाता है। हालांकि मोबाइल फोन का संतुलित उपयोग बहुत जरूरी है। अधिक समय तक स्क्रीन देखने से बच्चों और युवाओं की आंखों और पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, इसलिए मोबाइल का जिम्मेदारी से उपयोग करना और समय सीमा तय करना आवश्यक है। मोबाइल फोन केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सरल, सुविधाजनक और मनोरंजक बनाने वाला एक बहुमुखी साधन है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह हमें समय बचाने, जानकारियां जुटाने और लोगों से जुड़ने में मदद करता है। आज के आधुनिक दौर में तकनीक ने मानव जीवन को पूरी तरह बदलकर इसे सरल बना दिया है। जहां पहले संचार के लिए पत्राचार था, टेलीग्राम का सहारा लिया जाता था, वहीं आज बस मोबाइल फोन में एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया से संपर्क करना संभव हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीकी परिवर्तन में मोबाइल ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। मोबाइल फोन आधुनिक जीवन के सर्वव्यापी भाग से अधिक है। वे अनिवार्य हो गए हैं जो हमारी उंगलियों पर सुविधा और कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी या टूल की तरह ये लाभ और नुकसान दोनों के साथ आते हैं। एक ओर वे तुरंत संचार प्रदान करते हैं, जिससे हमें अपने प्रियजनों, सहकर्मियों और दुनिया से जुड़े रहने की अनुमति मिलती है। मोबाइल फोन के अन्य लाभों में हमें समाचार और शैक्षिक संसाधनों से लेकर मल्टीमीडिया कंटेंट और ऑनलाइन शॉपिंग तक कुछ ही सेकंड के भीतर जानकारी और मनोरंजन की संपत्ति प्रदान करना शामिल है। लेकिन मोबाइल फोन के कई नुकसान भी हैं। वे रेडिएशन, सोशल आइसोलेशन और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बन सकते हैं, जिसमें आंखों में तनाव, गर्दन में दर्द और नींद के पैटर्न में बाधा आ सकती है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, जैसे आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या हो सकती है। मोबाइल फोन को अधिक उपयोग से पढ़ाई या काम के दौरान ध्यान भटकता है। इससे सामाजिक दूरी भी आती है, क्योंकि मोबाइल के कारण लोग आमने सामने बातचीत कम करते हैं। मोबाइल फोन के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का भी खतरा रहता है। इससे निजता का उल्लंघन होता है। कई बार मोबाइल फोन की लत लगने से समय का सदुपयोग नहीं हो पाता। मोबाइल फोन के जरिए साइबर अपराध जैसे हैकिंग, फ्रॉड आदि भी समाज में बढ़ गए हैं। एक तरफ जहां इसके कुछ नुकसान हैं, वहीं मोबाइल फोन्स के बहुत फायदे भी हैं। स्मार्टफोन कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। लोग एक एक काम के लिए जहां घंटों अपना श्रम, धन और ऊर्जा खर्च करते थे, मोबाइल और इंटरनेट ने उसे सेकंडों का काम बना दिया है। आपको अब बिल जमा करने, रिचार्ज करने, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। बहुत से काम मिनटों में मोबाइल के जरिए संभव हो गए हैं। समाचार देखने, मनोरंजन के लिए फिल्म, सीरीज, धारावाहिक देखने, बच्चों को पढ़ाई में मदद करने, दुनिया से जुड़े रहने, सोशल मीडिया की गतिविधियों को देखने, संगीत, नृत्य, यातायात जैसे कई काम मोबाइल के माध्यम से आसान हो गए हैं। मोबाइल में अनेक चीजें समाहित हो जाने की वजह से अब कई अन्य उपकरणों का काम मोबाइल ही कर देता है। मोबाइल फोन के व्यापक उपयोग का शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और परिवहन जैसे उद्योगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मोबाइल तकनीक की मदद से छात्र ऑनलाइन संसाधनों और वर्चुअल कक्षाओं तक पहुंच सकते हैं, जबकि डॉक्टर दूर से ही मरीजों की दवा और उनकी देखरेख के तरीके बता सकते हैं। मोबाइल फोन एप्लीकेशन ने सवारी बुक करने और ट्रैक करने, लाइव ट्रैफिक यातायात देखने और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को ट्रैक करने के साथ अधिक सुविधाजनक बना दिया है। अतः ये एक बेहतरीन उपकरण है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक है। स्मार्ट संतुलित उपयोग से शिक्षा, व्यवसाय और संचार में मदद मिलती है, जबकि लत स्वास्थ्य समस्याओं, समय की बर्बादी और सामाजिक दूरी का कारण बनती है। मोबाइल फोन आधुनिक युग का एक अनिवार्य और शक्तिशाली उपकरण बन गया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को सरल और उन्नत बनाता है। अतः ये स्पष्ट है कि मोबाइल फोन का सही और संतुलित उपयोग ही समझदारी है। यदि हम इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस्तेमाल करें, न कि इसकी लत बनने दें, तो ये हमारे जीवन को और अधिक प्रोडक्टिव और आसान बना सकता है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थीं ये वार्ता। शीर्षक था मोबाइल का उपयोग, लाभ और नुकसान।

वार्ताकार थी श्रेया श्रीवास्तव। अब चलते हैं गीत संगीत की ओर, तो आइए सुनते हैं ये गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी, आशा भोसले ने, SH बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है OP नैयर ने, और फिल्म है कश्मीर की कली।

रखा करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां जब विराट रूप ले लेती हैं तो इनका उपचार भी असंभव हो जाता है। महिलाओं में होने वाली ऐसी अनेक गंभीर बीमारियां हैं जो धीरे धीरे लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं। तो इन्हीं गंभीर बीमारियों में आज हम आपको PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसके बारे में बात करेंगे। बहनों, ये दोनों बीमारियां खराब जीवन शैली और हार्मोनल असंतुलन के कारण होती हैं। ये दोनों ओवरी में होने वाली बीमारियां हैं PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसमें अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, यही सिस्ट बाद में बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। इसको अधिक गंभीर स्थिति नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपचार संभव है, लेकिन PCOS ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन आवश्यकता से अधिक बनने लगते हैं और ओव्यूलेशन रुक जाता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, यूट्रस में सिस्ट बन जाती है, वजन बढ़ने लगता है, पीरियड्स का आना अचानक बंद हो जाता है या फिर अनियमित हो जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा पीरियड आने लगते हैं, महीने में 2-3 बार या बहुत दिनों तक लगातार पीरियड्स आते हैं, यानी कि पीरियड्स की अनियमितता हो जाती है, चेहरे में और शरीर में अलग रंग के तिलमसा और सेवुआ हो जाते हैं। ये इस बीमारी के प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर इसी स्टेज में इसका उपचार हो जाए तो जीवन सुरक्षित है, वरना जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है उपचार की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाती हैं और आगे चलकर ये समस्या कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो बहनों, यदि ओवरी या पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सोनोग्राफी, खून की जाँच और कैंसर की जाँच समय पर विशेष रूप से करा लेना चाहिए ताकि समय पर उपचार किया जा सके। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये भी एक हार्मोनल बीमारी है। इसमें महिलाओं के अंडाशय में कई अपरिपक्व अंडे इकट्ठे होकर छोटे छोटे सिस्ट का रूप ले लेते हैं जो उपचार कराने पर ठीक हो जाते हैं। ये दोनों ही समस्याएं खराब लाइफस्टाइल, डाइट, मोटापा और हार्मोनल असंतुलन के कारण होती हैं। तो बहनों, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो या PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दोनों बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी नियमित दिनचर्या बनानी होगी, खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, योग प्राणायाम भी नियमित रूप से करने के साथ साथ अपनी जरूरी जांचें और उपचार भी कराना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, तो आइए सुनते हैं ये गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इस गीत को हमने लिया है फिल्म गीत से।

गर्मियों के मौसम में वायली पकवान खाने का मन नहीं होता है। अगर हम बिना तेल के कुछ हटकर बनाएं तो मन भी अच्छा हो जाता है और हमारी सेहत को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आज व्यंजन विधि में हम आपको बताएंगे बिना तेल के वाफले बनाना। तो कागज और कलम उठाकर सामग्री नोट कर लीजिए। 1 कप पोहा, 1 कप सूजी, 1 कप दही, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और शिमला मिर्च। तो बहनों, पोहा और सूजी के बाफले बनाने की विधि भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले 1 कप पोहा को अच्छी तरह धोकर उसमें दही सूजी मिलाकर पीस लेना है। अब इस मिश्रण में नमक मिर्च मिलाकर प्याज टमाटर और शिमला मिर्च को बारीक काटकर मिलाना है। एक कढ़ाई में पानी रखकर गैस के ऊपर रखें। छन्नी वाली थाली जिसमें छेद होते हैं, जो हम विशेष रूप से पोहा धोने के लिए यूज करते हैं, उसको कढ़ाई के ऊपर रखना है और इस थाली में जो मिश्रण या डो हमने तैयार किया है पकौड़ी के आकार में रखकर एक प्लेट या थाली से ढक देना है। थोड़ी देर बाद बाफले पलटकर फिर से ढक देंगे और जब दोनों तरफ सिक जाएं तो अलग बर्तन में निकाल लेना है। जितना भी डो है इसी तरह बाफले बना लेंगे। इनको चटनी या सॉस के साथ परोसिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो पोहा और सूजी के ये वाफले आप एक बार जरूर बनाएं, स्वयं भी खाएं, परिवार वालों को खिलाएं और हमारे कार्यक्रम भी नियमित रूप से सुनती रहें। अब हो गया है चलने का समय, तो चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें ठहरा धीर नहीं। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें ठहरा धीर नहीं। वो नेत्र नेत्र भी होते हैं क्या, वो नेत्र नेत्र भी होते हैं क्या जिसमें भावुकता का नीर नहीं। जीवन की कठिन परीक्षा में आशा ही एक सफलता है। जीवन की कठिन परीक्षा में आशा ही एक सफलता है।

है, नियमित सींचो पौधे को पुष्प तभी तो खिलता है। यदि पौधे को वृक्ष बनाना है तो संरक्षण का दीप जलाना होगा। मीठा फल पाना है लक्ष्य यदि, तो बीज वही उगाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें होंगी, साथ ही होगा गीत संगीत। अभी अनुमति दीजिए नीलम तिवारी को। नमस्कार।

अभी महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे स्वाति उखले और साथियों के गाए हुए कुछ मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लियाकत हुसैन की आवाज में चंद गजलें। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की है।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे जावेद अख्तर का लिखा हुआ, आरडी बर्मन का संगीत है, आवाज कुमार सानू की है और फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। वहीं दूसरी ओर श्री मोदी ने और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन ने एक साझा लेख लिखकर कहा है कि दुनिया को संकीर्ण सोच छोड़कर आपसी सहयोग की राह चुननी होगी। लेख में भारत के दो बड़े लक्ष्यों का जिक्र है, इसमें 2047 तक विकसित देश बनना और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है। पिछली बैठक पिछले साल जून में वाराणसी में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उज्जर बस्तर कार्यक्रम के मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। डीजीपी कैलाश मकवाना समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और हॉक फोर्स के जवान इस सम्मान से नवाजे गए। हॉक फोर्स ने आधुनिक तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी के दम पर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। किसानों को 2,585 रूपये समर्थन मूल्य के साथ 40 रूपये बोनस मिलाकर 2,625 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। अब तक किसानों को 10,19,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का भुगतान हो चुका है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को वापस न छोड़ने के अपने पुराने आदेश को बदलने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए। अदालत ने बुजुर्गों, बच्चों, यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। आज सोने और चांदी दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1168 रुपए महंगा होकर 1.59 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 2181 रुपए उछलकर 2.70 लाख रुपए हो गए हैं। प्रदेश में कल भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खजुराहो में पारा 46.8 डिग्री पहुंचा, जो इतिहास का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। नौगांव में 40, राजगढ़ में 45.5, रतलाम में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आगर मालवा में जिला पोषण बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में कुपोषण मुक्ति अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण स्तर में सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। कटनी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने मानसून पूर्व तैयारियां तेज कर दी है।

0: शिवपुरी में कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत संचालित 10 दिवसीय खरीफ पूर्व कृषि रथ अभियान चलाया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में यह भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत

0: इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता

0: सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी।

0: जारी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, तपती हुई दोपहरी की जब जिंदगी कुछ पल फुर्सत की तलाशती है, किसी गीत की छांव तले सुस्ता लेना चाहती है, इन पलों में हम लेकर आए हैं भावनाओं से सजी वो पोटली जिसमें हैं आपकी चिट्ठियां, आपके शब्द, आपकी फरमाइशें। तो आइए कुछ पल सुरों के साथ चलते हैं, कुछ पल सुकून के साथ गुजारते हैं, कुछ पल आपके साथ गुजारते हैं, मिलकर गुनगुनाते हैं आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत कुर्बानी फिल्म से, आवाजें कंचन, मनहर और इंदिवर आनंद की, गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फरमाइश आप सबकी है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। निम्भोरा से अशोक देशमुख, शरद देश, पवन जोशी, शिवाजी चौक, बुराला खुर्द से आदिनाथ वाघ, अमोल वाघ। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियानामल, पार्वती मोटवानी, राजेश रेशम मोटवानी, मुकेश भावना, सोमेश और यशराज। देवास से राजीव अग्रवाल। ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। ये चिट्ठी आई है बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि देवांगन, जया, जानवी, तृप्तेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इसी गीत को पसंद करते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश। तो आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बानी फिल्म का ये गीत। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।

और अब आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप

शंकर हुसैन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। अनुरोध आप सबका है, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। ये चिट्ठी आई है डोंडी लोहारा दुर्ग से। लिखने वाले श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय, रोशनी, बेबी पूजा, तुषार, प्रभा देवी। सारणी जिला बैतूल से इसी गीत को पसंद करते हैं अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। शाजापुर से मधु राजावत, एमएम राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शंकर हुसैन फिल्म का ये गीत। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।

और अब आइए जूली फिल्म का गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन। अनुरोध आप सबका है। नागर कोहरा से जग्गर राम साहू, जमुना देवी साहू, राजू और लल्ला साहू। सौगा धमतरी से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित और गजेंद्र कुमार चंदन। ये खताया है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले श्रोता हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, दिशा और लवी श्रीवास्तव। तिलदा से इस गीत को पसंद करते हैं प्रदीप कुमार चंद्र, सीमा, प्रिया, ओशीम और सोमियन कुमार चंद्र। ये खत आया है ग्राम अमलेश्वर से। लिखने वाले श्रोता हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दुनिया ये तसव्वुर हम आबाद नहीं करते, याद आते हो तुम खुद ही हम याद नहीं करते।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समा...

और अब आइए सुनते हैं नूरी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार खयाम। पसंद आप सबकी है ग्राम।

बुढ़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंदले और आरती जूंदले, मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई कि तेरा नाम लेकर पुकार लूं।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर यह दो दिवसीय दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बस्तर के बादल अकादमी में आयोजित उजर बस्तर कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान बालाघाट और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में कामयाब एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए दिया गया। प्रदेश में अब तक 12,10,000 से ज्यादा किसानों से करीब 87,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह खरीदी 23 मई 2026 तक चलेगी। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किउल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बेहद व्यस्त हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की क्षमता बढ़ाएगा। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 बजे, रात 8:15 पर और रात 10 बजे। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे। 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशां आप सुनेंगे, इसमें आज सुनिएगा आबशारे गजल। और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन राग हमीर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ की गई भेंटवार्ता, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, वेब्स OTT और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियावेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका मनचाहा कार्यक्रम युवाणी।

0: साथियों, स्वागत है युववाणी कार्यक्रम में। और आज मैं हूं आपके साथ, आपकी मित्र महिमा दी पटेल, और मेरा साथ दे रही हैं
1: शिवांगी तिवारी।
0: स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में होंगी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम यानी कि ज्ञान से सराबोर कार्यक्रम ज्ञान सरोवर, और आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे गीत और संगीत। आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से, जिसका विषय है मूल अधिकारों

0: का संरक्षण और रिट। दोस्तों, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करता है जो उसके जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है।
1: संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल नागरिकों को अधिकार देना नहीं था, बल्कि उन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी था। इसी कारण संविधान में मूल अधिकारों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है।
0: यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण लेकर न्याय प्राप्त कर सकता है।
1: भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना गया है, क्योंकि वही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है।
0: दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वे अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं।
1: इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया को भी अधिकार प्राप्त है कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, क्योंकि यही अनुच्छेद नागरिकों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय तक पहुंचने की शक्ति देता है।
0: दोस्तों, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। रिट न्यायालय द्वारा जारी किया गया विशेष आदेश होता है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और प्रशासनिक मनमानी को रोकना है।
1: जब कोई व्यक्ति, संस्था या सरकारी अधिकारी संविधान के विरुद्ध कार्य करता है या किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब न्यायालय रिट जारी कर न्याय सुनिश्चित करता है।
0: दोस्तों, भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। पहली रिट हैवियस कॉर्पस कहलाती है, जिसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
1: और साथियों, दूसरी रिट परमादेश कहलाती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उसके वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। जब कोई अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, तब यह रिट जारी की जाती है।
0: तीसरी रिट, जिसे कहते हैं प्रतिषेध, ये रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है।
1: चौथी रिट अधिकार रक्षा कहलाती है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किसी सार्वजनिक पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। यदि उसकी नियुक्ति अवैध पाई जाती है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है।
0: पांचवी और आखिरी रिट उत्प्रेक्षण कहलाती है। इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय को निरस्त कर सकता है, यदि कानून के विरुद्ध हो और इसका उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को सुधारना और न्याय की रक्षा करना है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों के संरक्षण और रिट की। कहीं मत जाएगा, रुकते हैं छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: अंतराल के बाद दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अगली श्रृंखला में ले चलते हैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार, निबंधकार, आलोचक और चिंतक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और साहित्य को नई दृष्टि प्रदान की।
1: साथ ही उनकी पुण्यतिथि केवल एक साहित्यकार को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद करने का दिन भी है।
0: दोस्तों, उनका निधन 19 मई सन 1979 को हुआ था। इस दिन साहित्य जगत उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है और उनके विचारों तथा रचनाओं के महत्व पर चर्चा करता है।
1: जी हाँ साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। प्रारंभ से ही उनका झुकाव संस्कृत, ज्योतिष और भारतीय दर्शन की ओर था।
0: और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी विद्वता और गहन अध्ययन के बल पर हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। वे केवल लेखक ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के महान व्याख्यानकार भी थे। उन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिक दृष्टि से समझाने का कार्य किया और ये बताया कि संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली शक्ति है।
1: उनकी भाषा अत्यंत

0: सरल, प्रभावशाली और साहित्य गरिमा से युक्त थी। उन्होंने अपने निबंधों और आलोचनात्मक लेखन में इतिहास, दर्शन, संस्कृति और समाज को गहराई से जोड़ा है।
1: उनकी प्रमुख कृतियों में कबीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल, कल्पलता, चारू चंद्रलेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पौधा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे विश्व भारती विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, जहां उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला।
1: इसी के साथ शांति निकेतन के वातावरण ने उनके चिंतन को और अधिक व्यापक बनाया। बाद में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया और उनके विद्यार्थियों को साहित्य एवं संस्कृति की नई दृष्टि प्रदान की।
0: साथियों, इनकी पुण्यतिथि हमें यह संदेश देती है कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने वाली शक्ति है। उनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, ज्ञान और साहित्य के सेवा में समर्पित रहा। इसलिए हिंदी साहित्य में उनका नाम सदैव सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा।
1: तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि के बारे में। आइए सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते हैं टू स्टेट फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की और चिन्मय श्रीपदा की।
1: संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय और गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य। दोस्तों, अब ले चलते हैं हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जो कि हम हर माह के तीसरे मंगलवार को आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं, ज्ञान से सराबोर कार्यक्रम ज्ञान सरोवर, जिसमें संचालक की भूमिका में हैं विवेक श्रीवास्तव, स्कोरर हैं शिवांशु प्रजापति, प्रतिभागी में हैं अभय राज सिंह चौहान, रामजीत सेन, श्वेता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, ओम प्रकाश यादव और अनीश कुमार यादव। आइए सुनवाते हैं आपको ज्ञान सरोवर कार्यक्रम।
2: दोस्तों, सामान्य ज्ञान हर प्रतियोगी परीक्षा का अहम हिस्सा होता है। सामान्य ज्ञान की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान से शराबोर कार्यक्रम ज्ञान सरोवर लेकर उपस्थित मैं आपका दोस्त विवेक श्रीवास्तव, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हर बार की तरह हमारे पास हैं तीन टीमें, जान लेते हैं तीनों ही टीमों का परिचय। टीम ए,
3: रामजीत सेन।
4: टीम ए से अनीश यादव।
2: टीम बी
5: से प्रियंका मिश्रा।
6: ओम प्रकाश यादव।
2: टीम सी
7: से श्वेता मिश्रा।
8: अभय राज चौहान।
2: जैसा कि हमने इनकी जुबानी इनका परिचय जाना, अब हम बता देते हैं कि इस खेल से संबंधित कुछ नियम। प्रत्येक टीम से बारी बारी से एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर 2 अंक मिलेंगे और गलत जवाब का कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न को पास भी कर सकते हैं। पास किए हुए प्रश्न का सही उत्तर देने वाली टीम को बोनस के रूप में 1 अंक मिलेगा। क्या आप सभी तैयार हैं?
9: यस।
2: आज के इस खेल में हमारे साथ स्कोरर के रूप में हैं
10: शिवांशु प्रजापति।
2: कार्यक्रम को शुरू करते हैं पहले राउंड का पहला प्रश्न टीम ए से। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी?
4: आजाद हिंद फौज।
2: आपका प्रश्न सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ?
8: पास।
2: टीम बी ने प्रश्न पास किया है टीम सी को। टीम सी इसका जवाब दे।
8: 1942।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, लाल किला किसने बनवाया?
8: शाहजहां।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है?
3: लाल बहादुर शास्त्री।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है?
6: दिल्ली।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
7: 26 जनवरी 1950।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, अशोक किस वंश का शासक था?
3: मौर्य वंश का।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ?
7: 13 अप्रैल 1919।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारत का संविधान किसने लिखा?
8: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
3: 5 वर्ष का।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, राज्यसभा को किस सदन के नाम से जाना जाता है?
8: पास।
2: टीम बी ने प्रश्न पास किया है टीम सी को।
8: पास।
2: टीम सी ने प्रश्न पास किया है टीम ए को।
3: उच्च सदन।
2: टीम ए ने इसका सही जवाब दिया है, बोनस के रूप में मिलता है 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
7: दिल्ली।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है?
3: 18 वर्ष।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है?
6: अशोक स्तंभ।
2: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम

0: सी से भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
1: रविंद्रनाथ टैगोर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
2: 206।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा?
3: चीता।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, एटीएम का पूरा नाम क्या है?
3: पास।
0: टीम सी ने प्रश्न पास किया है टीम ए को।
2: ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, गीतांजलि के लेखक कौन है?
4: रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
3: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
0: आपका उत्तर गलत है, इस उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है टीम सी से, वह कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है?
1: पारा।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है?
2: विटामिन ए।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है?
3: केरल।
0: आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है टीम सी से, वह कौन सा यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है?
3: पास।
0: टीम सी ने प्रश्न पास किया है टीम ए को।
4: सीस्मोग्राफ।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, पंचतंत्र की रचयिता किसे माना जाता है?
2: विष्णु शर्मा।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं?
3: हाइड्रोजन गैस।
0: आपका उत्तर गलत है, आपको इसका कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है टीम सी से, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
1: यकृत।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है?
2: सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है?
1: अरुणाचल प्रदेश।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है?
3: पास।
0: टीम सी ने प्रश्न पास किया है टीम ए को।
4: शुक्र ग्रह।
0: टीम आपको मिलता है बोनस के रूप में 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
2: न्यूयॉर्क।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
1: इंदिरा गांधी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
1: हीरा।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है?
2: अवधी भाषा में।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, वह कौन सा देश है जिसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है?
3: जापान।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
3: राष्ट्रपति।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में सबसे अधिक होता है?
4: तांबा।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, मानव शरीर में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल सहायक होता है?
3: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
1: 15 जनवरी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। प्रथम राउंड की समाप्ति पर हम अपने स्कोरर से निवेदन करेंगे कि स्कोरिंग कर रहे हैं। जब तक हमारे स्कोरर स्कोरिंग करते हैं तब तक हम सभी को सुनवाते हैं ये गीत। गीत को आप ध्यान से सभी सुनिएगा क्योंकि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे।

0: पहले राउंड की समाप्ति पर टीम ए का स्कोर है 30, टीम बी का स्कोर है 18 और टीम सी का स्कोर है 21। पहले राउंड में टीम ए अपनी बढ़त बनाए हुए है।
1: दूसरे राउंड का प्रथम प्रश्न है टीम ए से, अभी जो आपने गीत सुना यह किस फिल्म से लिया गया है?
2: बिच्छू फिल्म से।

0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। अभी जो आपने गीत सुना है, इस गीत में आवाज किसकी थी?
1: श्वेता सेट्टी, हंसराज हंस।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। अभी जो आपने गीत सुना है, इस गीत के गीतकार कौन है?
2: समीर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत कौन सी थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी?
3: हैदराबाद।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। वह कौन सा यंत्र है जिससे वायु दाब मापा जाता है?
1: बैरोमीटर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है?
1: कमल।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। वह कौन सा देश है सबसे पहले कागज का निर्माण किया था?
3: चीन।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है?
2: मत्स्य पालन से।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है?
2: स्टेप्स।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है?
3: नाइट्रस ऑक्साइड।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है?
1: शक।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। वह कौन सा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है?
1: ऊंट।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं?
3: भूपरपट्टी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं?
2: पृथ्वी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
2: वूलर झील।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। वह कौन सा तत्व है जो हीरे और कोयले दोनों में पाया जाता है?
3: कार्बन।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है?
2: 22 भाषाओं को।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। वह कौन सा समुद्र है जिसमें कोई नदी नहीं गिरती?
2: मृत सागर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
3: पामीर का पठार।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने रेडियम की खोज की थी?
1: पास।
0: टीम बी ने प्रश्न पास किया है टीम सी को।
2: क्यूरी।
0: टीम सी ने इसका सही जवाब दिया है। बोनस के रूप में मिलते हैं 1 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है?
3: भारत।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है?
3: 4 वर्षों के।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। हाल के वर्षों में भारत के स्टार वाला फेंक खिलाड़ी कौन है?
2: नीरज चोपड़ा।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। फीफा का मुख्यालय किस देश में स्थित है?
2: पास।
0: टीम सी ने प्रश्न पास किया है टीम ए को।
3: स्विट्जरलैंड।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं बोनस के रूप में 1 अंक। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
3: बेंगलुरु।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का शौर्य मिशन कौन सा है?
2: आदित्य L1।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर एक्स किया गया?
2: ट्विटर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है?
3: बिहार गांधी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से। भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप सेक्टर वर्तमान में किस क्षेत्र से जुड़ा है?
1: टेक्नोलॉजी।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से। भारत की नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी?
2: 2020।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी मानी जाती है?
4: वंदे भारत।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, डिजिटल भुगतान के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय प्रणाली कौन सी है?
1: UPI।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, भारत के

0: वर्तमान विदेश मंत्री कौन है?
1: एस जयशंकर।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम ए से, ग्रैंड स्लैम शब्द किसे खेल से संबंधित है?
2: टेनिस।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम बी से, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी?
3: भारत।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। अगला प्रश्न है टीम सी से, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन भेजने वाला देश कौन सा है?
1: भारत।
0: आपका उत्तर सही है, आपको मिलते हैं 2 अंक। इस खेल की समाप्ति पर हम स्कोरर से जान लेते हैं कि तीनों ही टीमों का कुल स्कोर।
4: दूसरे राउंड की समाप्ति पर टीम ए का स्कोर है 25, टीम बी का स्कोर है 22 और टीम सी का स्कोर है 23। और अगर दोनों ही राउंड की बात करें तो टीम ए का स्कोर है 55, टीम बी का स्कोर है 40 और टीम सी का स्कोर है 44। टीम ए का अच्छा प्रदर्शन रहा, टीम ए के लिए तालियां। आज की हमारी विजेता टीम है टीम ए।
0: सभी प्रतिभागियों को इस खेल में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
5: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञान से सरोवर, ज्ञान सरोवर कार्यक्रम। संचालन कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव, स्कोरर थे शिवांशु प्रजापति और प्रतिभागियों में थे अभय राज सिंह चौहान, रामजीत सेन, श्वेता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा, ओम प्रकाश यादव और अनीस कुमार यादव। अब मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: दोस्तों, अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में ले चलते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर, जिसका विषय है विश्व फेयर प्ले दिवस। साथियों, विश्व फेयर प्ले दिवस हर वर्ष खेलों में ईमानदारी, सम्मान और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों, दर्शकों और समाज को ये संदेश देना है कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण निष्पक्षता और नैतिकता होती है। फेयर प्ले का अर्थ है नियमों का पालन करना, विरोधी खिलाड़ी का सम्मान करना, धोखा न देना और खेल का सकारात्मक भावना से खेलना। आज के समय में जब खेलों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, तब फेयर प्ले का महत्व और अधिक हो जाता है।
7: दोस्तों, विश्व फेयर प्ले दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि सच्ची सफलता केवल जीतने में नहीं बल्कि सही तरीके से खेलने में होती है।
5: खेलों के माध्यम से भाईचारा, एकता और आपसी सम्मान की भावना विकसित होती है। फेयर प्ले खिलाड़ियों को अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच सिखाता है।
7: यदि सभी खिलाड़ी निष्पक्षता का पालन करें तो खेल और भी प्रेरणादायक और मनोरंजक बन जाते हैं।
5: ये दिवस युवाओं की ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है।
7: दोस्तों, फेयर प्ले केवल खेल तक सीमित नहीं है बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए।
5: हमें हमेशा खेल भावना बनाए रखते हुए दूसरों के प्रयासों का सम्मान करना चाहिए।
7: हमें सभी खेलों और जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान की भावना बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे विश्व फेयर प्ले दिवस की। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मनोरंजन करा देते हैं आपका एक और प्यारे से गीत के साथ। आइए सुनवाते हैं दो कलियां फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की,
1: और साहिर लुधियानवी के बोलों को संगीत से सजाया था रवि ने।
0: तो अब कहीं मत जाएगा, रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आज हमारे साथियों को दे देते हैं महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। दोस्तों, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
1: पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3।
0: पदों की संख्या है 6,565।
1: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
0: आवेदन की प्रारंभिक तिथि 30 जून 2026, अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026।
1: शैक्षणिक योग्यता
0: बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है।
1: अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें।
0: तो दोस्तों, ये तो थी हमारे कार्यक्रम की रोजगार सूचना। चलते चलते आपको बता देते हैं कल के कार्यक्रम। कल होगी चर्चाएं, साथ में होगा सुगम गायन दीपांशी मिश्रा की आवाज में,
1: साथ ही होंगी वार्ताएं और विषय होगा महान क्रांतिकारी वीर सावरकर, वार्ताकार होंगे पारसी अवस्थी, और साथ ही होंगे मनोरंजन के लिए गीत और रोजगार सूचना।
0: तो दोस्तों, आप सभी से बात करते करते घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं गया, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी मित्र शिवांगी तिवारी
1: और महिमा दी पटेल को नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं जी प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं फिल्म एक विलन से ये गीत। आवाज है अंकित तिवारी की, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम लीजिए, सुनिए श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत दिया है विशाल और शेखर ने। फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

इसी के साथ आज का हमारा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1287। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज के हमारे कलाकार होंगी पुष्पा देवी अहिरवार। शाम 7:20 पर ग्रामीण बहनों के लिए घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ग्रामीण बहनें आज सुनेंगी विभिन्न विषयों पर चर्चा। साथ ही होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। लोकेश कुमार से आप सुनेंगे काव्य पाठ और आज की सीख का विषय होगा जैसे ही हम वैसे ही तुम भी ऊसे ही मिले खसम भी। रात 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रैली किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम।

श्रोताओं, आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर आप हिंदी महकमा सुनेंगे हिंदी काव्य पाठ रविंद्र कुमार यादव से। 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनिएगा धारावाहिक गीत गीता का भाग 5, शीर्षक होगा संन्यास योग। 9 आप सुनेंगे लोकरंग कार्यक्रम जिसमें कल के हमारे कलाकार होंगे सचिन खरे। 9:30 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म से क्रम में फिल्म संगीत आप सुनेंगे जिसमें हम सुनाएंगे आपको फूल और काटे फिल्म के गीत। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन का भाग 6। 10:10 पर आप सुनेंगे सामुदायिक गान का प्रशिक्षण पाठ जिसमें हम सुनाएंगे आपको असमिया भाषा का प्रशिक्षण पाठ। गीतकार होंगे सतीश दास। 10:30 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर 1 महिला कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत महिलाएं सुनेंगी विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथ ही होगी वार्ता और होगी उपयोगी जानकारी। कल की हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत युवा साथी कल सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथ ही होगा सुगम गायन दीपांशी मिश्रा से और होगी वार्ता महान क्रांतिकारी वीर सावरकर। वार्ताकार होंगे पारस अवस्थी और साथी होगी रोजगार सूचना। शाम 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1288 को आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा शाम 6। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। कलाकार होंगे देवेंद्र कुमार अहिरवार। 7:20 पर ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत ग्रामीण भाई सुनेंगे विभिन्न विषयों पर चर्चा, साथियों की धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 5, साथियों का काव्य पाठ मुकुंदी लाल रैकवार का। और आज की सीख का विषय होगा जो ना भावे आप खो देव बहु के बाप खो। रात 8 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रैली किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। 10 आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

ये थे आज के हमारे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ही आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण प्रकाशन नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना आदि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। साथ ही किसी भी प्रकार के मशाल जुलूस भी प्रतिबंधित होंगे। सूचना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे के दो दिवसीय दौरे में उन्होंने भारत नॉर्वे व्यापार और रिसर्च समिट में भी हिस्सा लिया। समिट में 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ समेत 250 से अधिक लोग शामिल हुए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानून मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के अंतर्गत मामलों की पहचान कर उनके तेजी से निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना केस में उनका पक्ष पूछा है। आप नेताओं मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। रिटायर्ड जज की बहू त्रिशा शर्मा की मौत के मामले पर एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, लुकआउट नोटिस के लिए डीसीपी भोपाल कमिश्नरेट और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आवश्यक पत्राचार किया गया है। इस प्रक्रिया पर शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी। और आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर

0: एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी के चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात
1: जी। विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से
0: जी। श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु

0: को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।
5: गुब्बारे, गुब्बारे,
3: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
7: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
1: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया?

0: और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ। रुको रुको रुको,
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।

0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
6: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4

0: सड़क आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
1: अच्छा, तो ये बात है बहनों। चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
1: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हाँ, सब तैयार है, तैयार
4: है, हम बिल्कुल तैयार है।
2: पेड़ नहीं कटने देंगे,
0: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो?
9: मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू मारो।
8: अरे भाई कौन है? रुको, इसे हम चल जाएंगे पेड़ों से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से
9: दो मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
8: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
0: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
9: ठीक है तो वहाँ चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
9: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
5: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
7: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ

0: और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं पुष्पा देवी अहिरवार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं पुष्पा देवी अहिरवार की गाई ये हरदौल गारी।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये धुनी भजन पुष्पा देवी अहिरवार से।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: आप सुन रहे हैं लोकधारा कार्यक्रम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं ये लोक शालीपद गीत जो कि बेटी बचाओ पर है और गाया है पुष्पा देवी अहिरवार ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आज के हमारे बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम की कलाकार हैं पुष्पा देवी अहिरवार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं उनकी गाई ये चेतावनी।

0: और इसी के साथ आज का हमारा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा भी यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार थी पुष्पा देवी अहिरवार। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज।

0: कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Potata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.

वही है, दिल जिसको लाइक करे बात वही है, कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है।

मिडिम विपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको बता देते हैं गुमशुदा संबंधी सूचना। पहली गुमशुदा संबंधी सूचना है लाखन सिंह की। इनका पूरा नाम है लाखन सिंह जाटव। पता है ग्राम मगराया पोस्ट कुकरगांव ओरई तहसील थाना कोतवाली ओरई जला जालौन से। रंग गोरा है, चेहरा लंबा है, लंबे बाल हैं, उम्र करीब 20 वर्ष बताई गई है, लंबाई करीब 5 फुट 2 इंच है, आंख नाक कान औसत और गोल हैं, और ये 22/3/2026 से गुम हैं। जिन किसी को भी इनके बारे में जानकारी लगती है वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। पहला नंबर है 9792943581 यानी 9792943581। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, नंबर है 9792943581 यानी 9792943581। दूसरा नंबर है 9454401427 यानी 9454401427। और तीसरा नंबर है 9454403599 यानी 9454403599। ये थी लाखन सिंह जाटव की गुमशुदा सूचना। आइए आपको बता देते हैं हिमांशी दुबे की गुमशुदा संबंधी सूचना। इनकी उम्र करीब 21 वर्ष है।

रंग गेहुआ है, एक गहरा बदन है, ऊंचाई 4 फुट 2 इंच है, सफेद सलवार सूट पहने हुए, दिनांक 15/4/2026 को शाम के लगभग 3:30 से ग्राम सुदूपुरा जालौन से कहीं चली गई हैं। पिता का नाम मोहन दुबे है। जिन किसी को भी इनके बारे में जानकारी लगती है, वह इन नंबरों पर जानकारी दे सकता है। नंबर है 9335270128, यानी 9335270128। दूसरा नंबर है 8303540253, यानी 8303540253। तीसरा नंबर है 9305088964। तीसरा नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9305088964। यह गुमशुदा संबंधी सूचना है हिमांशी दुबे की, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष बताई गई है।

मैडम वेपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अभी आपने सुना था गुमशुदा संबंधी सूचना। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जो कि हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में की शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, चार राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दी रेबीज और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, 22 शहरों में तापमान 44 के पार, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून के सम्मान के नजरिए से भारत और नॉर्डिक देश स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश बढ़ा है।
1: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: सम्मेलन से पहले श्री मोदी ने डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग मुलाकात भी की। 5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। अब श्री मोदी 20 मई तक इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक की मेजबानी कर रही है। बैठक में डॉ. मोहन यादव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद केंद्र और राज्यों के बीच आपसी मुद्दों को मिल बैठकर सुलझाना है।

0: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 साल में बस्तर देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। जगदलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2031 तक बस्तर के लोगों की आमदनी 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर में 200 सुरक्षा शिविरों में से 70 को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहां बैंकिंग, स्कूल, कौशल प्रशिक्षण और वनोपज प्रसंस्करण जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कुत्तों की संख्या खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हो और लगातार हमलों से जन सुरक्षा खतरे में हो, वहां यह कदम उठाया जा सकता है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या पर कई निर्देश भी जारी किए। साथ ही कोर्ट ने कुत्तों की नसबंदी और आश्रय स्थल भेजने के पुराने आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। एमपी ट्रांसको ने वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसमिशन लॉस को 2.60% पर बनाए रखा है, जबकि नियामक आयोग का लक्ष्य 2.75% था। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बढ़ती पिछली मांग और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ने जैसी चुनौतियों के बावजूद ये कामयाबी हासिल की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोशाला में आज महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। मां वागदेवी की महाआरती, हवन और अखंड ज्योति स्थापना के साथ श्रद्धालुओं ने जश्न मनाया। पूरा परिसर में बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। श्रद्धालुओं की मांग है कि मां वागदेवी की मूल प्रतिमा को लंदन से वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने आज भोपाल के आदि भवन में जनजातीय गरिमा उत्सव कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जनजातीय अंचल की बच्चियां सुविधाओं के अभाव में उच्च शिक्षा छोड़ देती थीं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 बसें चलाई, जिससे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की संख्या 30 से बढ़कर 80% हो गई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में कल प्रदेश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल के सैकड़ों मेडिकल स्टोर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी नहीं है, जिससे नकली और एक्सपायरी दवाएं मरीजों तक पहुंचने का खतरा है। हालांकि अस्पतालों के अंदर में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सेना में सेवा के बाद श्री खंडूरी ने ईमानदार और पारदर्शी राजनीति का आदर्श स्थापित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना से लेकर राजनीति तक श्री खंडूरी का योगदान अमूल्य रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कृषि विकास समिति ने आज भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का दौरा किया। यहां संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती और कृषि वैज्ञानिकों ने समिति को पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 11 सदस्यीय समिति दल के साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि बढ़ा दी है। पहले सीमा 16,000 रूपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25,000 रूपये कर दिया गया है। यानी राज्य मंत्री किसी जरूरतमंद को एक साल में एक मामले में अधिकतम 25,000 रूपये तक की मदद दे सकेंगे। राज्य सरकार ने दिव्यांगजन और सामाजिक न्याय विभाग की 252 संस्थाओं की निगरानी के लिए क्वालिटी ऑडिट मोबाइल ऐप लागू किया है। इसके जरिए वृद्धाश्रम, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, विशेष विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारी मौके पर फोटो खींचकर रिपोर्ट दर्ज करेंगे और संस्था को ग्रेडिंग दी जाएगी। छोटे बच्चों की स्कूल से झिझक खत्म करने के लिए

केंद्र और राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एक ही परिसर में लाने का फैसला किया है। इस को लोकेशन मॉडल से बच्चों का आंगनवाड़ी से पहली कक्षा में जाना आसान और सहज हो जाएगा। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। खजुराहो में आज पारा 46.4 डिग्री पहुंच गया, जबकि भोपाल और इंदौर में दोपहर सड़कें सूनी दिखाई दी। प्रदेश के 22 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज दमोह रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एसी ट्रेन मां वैष्णो देवी के लिए रवाना हुई। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ट्रेन को विदा किया। झाबुआ, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ने आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। कटनी में जनजातीय समुदायों को शासकीय योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनभागीदारी अभियान की शुरुआत हो गई है। आगर मालवा में कल हुई टीएल बैठक में जिला पंचायत सीओ ने जिले में गठित की जाने वाली विभागीय समितियों का शीघ्र गठन कराने के निर्देश दिए। नीमच शासकीय आईटीआई में कल युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा मक्सी दाहोद में हुई बस दुर्घटना के बाद यात्री बसों की सघन जांच की जा रही है। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी। नर्मदापुरम जिले में जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले आईईसी अभियान चलाया जाएगा। राजगढ़ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मेडन वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण बहरों के लिए प्रस्तुत उनका मनचाहा कार्यक्रम घरनी।

0: बातें सीखत और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होत। तो देखो भैया बहनों, आज हिंदी के महान साहित्यकार, निबंध लेखक, आलोचक और उपन्यासकार तथा भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आज अपन सभी जने पुण्यतिथि मनाते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। देखो बहनों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में भाव हतो। वे हिंदी साहित्य के ऐसे महान व्यक्तित्व हते जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन सरल और रोचक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करो। बहनों, वे केवल साहित्यकार ही नहीं हते बल्कि वे एक उत्कृष्ट शिक्षक, चिंतक, शोधकर्ता भी हते थे। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन के संगे संगे कई छात्र छात्रन ज्ञान को प्रकाश दाओ और उनकी कछु प्रसिद्ध कृतियां हती, रचनाएं हती, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और अशोक के फूल और कबीर जैसी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हती। उनकी रचनाओं में अपुन खां भारतीय संस्कृति की गहराई, मानवीय संवेदनाएं और विचारन की मौलिकता साफ दिखाई दे। उनको मान बहतो कि साहित्य केवल मनोरंजन को साधन नहीं है बल्कि समाज सही दिशा देवी को माध्यम है। और उनके जीवन से हमें ज्ञान, अनुशासन, सादगी और सतत अध्ययन की प्रेरणा मिलत है। तो अपने भैया बहन से हम जो कहना चाहते हैं कि अपने जो भी साहित्यकार हैं उनके साहित्य को अपन अध्ययन करें और उनसे कछु न कछु नई प्रेरणा, नई सीख जरूर लेते रहें। और भैया बहनों, अपन से अब बतका होते ही रहे, इससे पहले तनक एक विराम लेते हैं।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: और देखो भैया बहनों, आजकल अपन सभी जने देख रहे हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है और जनसंख्या तो बढ़ गई है, संगे संगे यातायात के साधन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अपन जैसे घर से बाहर निकला तो अपन देखा थे सड़क पे कि वाहनन की कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ रात और आए दिन अपन एक न एक सड़क दुर्घटनाएं देख भी सुन भी मिलत रहते जिसे कई भैया बहनों जान माल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ा था। तो भैया बहनों, ऐसे अपन सड़क पर चला समय का शुभातन को जरूर ध्यान रखना है ताकि अपन हर प्रकार की परेशानियों से या इन सड़क दुर्घटना से बचे रहे। तो भैया बहनों, सबसे पहले बात तो यह है कि सड़क पार कर समय अपन हमेशा अपने दाएं बाएं देख के पार करना और सड़क पार कर समय हमेशा अपन खां ये बात को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में या दौड़ के सड़क पार बिल्कुल नहीं करना है। और वाहन चलाओ समय हेलमेट को उपयोग अपने भैयान खां जरूर करना है, चाहे भैया आप गाड़ी चला रहे हो या बहने गाड़ी चला रहे हो तो अपना हेलमेट को उपयोग जरूर करना है और संगे संगे सीट बेल्ट भी जरूर लगाने हैं। और वाहन ज्यादा तेज ना चलाएं और वाहन चलाओ समय मोबाइल को फोन को उपयोग बिल्कुल भी ना करें और नशा में वाहन ना चलावें। कहे कछु कछु भैया बहन नशा में वाहन चलाऊ थे तो जिसे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होने पड़ा था। तो अपन नशा में वाहन ना चलावें और सड़क सुरक्षा नियमन को पालन तो करना ही है, संगे संगे जहाँ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और अपन खां जागरूक खुद भी होना है और दूसरे भैया बहन खां भी जागरूक करना है। तो भैया बहनों, अपन जी कछु यातायात के नियमन को या सड़क सुरक्षा नियमन को पालन करें तो अपन भी बचे रहें और अपन दूसरे भैया बहन खां भी अपन सुरक्षित बचाएं।

0: और भैया बहनों, अब अपन कहाँ सुनवा रहे हैं एक काव्य पाठ विविध विषयों पे लोकेश कुमार से। तो अपन सुने और गुने।
1: साक्षरता गीत। अरे घर

देखो भैया बहनों और अपन सभी जन ने सुनो काव्य पाठ विविध विषयों पे लोकेश कुमार से। और अपन जैसे देखा था कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और गर्मी के मौसम में जो तापमान इतना ज्यादा वही टाइम पे बढ़ गया है और जो बड़ो भाव तापमान बाल बच्चन के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ई मौसम में तेज धूप और गर्म हवाएं चलती, जी हाँ लू का उजाड़, और जब लू बच्चन हाँ जल्दी प्रभावित करत, कैसे अपने बच्चा जो है वो कोमल होते हैं और लू लगवे से चक्कर, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी, तेज बुखार जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो बहनों अपन अपने बाल बच्चन हाँ लू से

जरूर बचाऊ न है, और लू से बचावे के लाने कछु सावधानी अपन खा रखना है। तो पहली बात तो जा है कि बच्चन खा अपन दोपहर 2-12 बजे से 4 बजे के बीच में तेज धूप में घर से बाहर ना जान देवे। और अगर जावो ज्यादा ही जरूरी है तो सिर ढक्के टोपी और रूमाल से अपन सिर ढक लेवे और इके बाद ही अपन बच्चन को ले जावे। और बच्चन हाँ हल्के रंग के सूती कपड़ा पहनावे और संगे संगे पर्याप्त मात्रा में पानी पिला उतरावे, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और ORS जैसे पेय पदार्थ हैं वे ई मौसम में फायदेमंद होते हैं। और एक बात को और खास तौर से ध्यान रखना है अपन का कि ई टाइम पे जैसे जो भी मौसमी फल होते हैं या ताजी फल और पौष्टिक भोजन अपन जरूर देवे। तो देखो बहनों, जे कछु छोटी छोटी सावधानी अपन रखें तो अपन अपने बाल बच्चन खा लू के जैसे खतरा से बचा सकत हैं और ना अपन परेशान हो पाए और ना अपने बाल बच्चे परेशान हो पावे। और जैसो के अब पहले अपन से बताओ हतो तो के आज मंगलवार है और हर मंगलवार का हम अपन की मनपसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी लेके आउते हैं, जो कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पे आधारित बुंदेली लोक गीतन को कार्यक्रम है और प्रस्तुति है रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और जोन भैया बहन चिट्ठियां पाती भेजबो चाहत हैं तो अपन का हम कार्यक्रम के अंत में अपना पतो बताए, सोपनामा पतो लिख लेना और हमारे पति पे चिट्ठियां पाती अपन का जरूर भेजना है। कछु भैया बहन ने हमारे पास चिट्ठियां पाती भेजी हैं और जिन्हें हमने आज के कार्यक्रम में शामिल करो है। तो देखा थे इन भैया बहन ने का कछु फरमाइश करी है। देखो बहनों, जब पहली चिट्ठी आई है ग्राम कटकहा जिला पन्ना से भेजे वाले भैया बहन है प्रताप सेन, सविता सेन, प्रशांत नेहा, अम्बेश कृष्णा, फ्रांसी सेन। और जहां अगली चिट्ठी आई है ग्राम मवैया तहसील नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है देवेंद्र कुमार राजपूत और राजेंद्र कुमार राजपूत एवं के। ये लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठिया आई है ग्राम पोस्ट गौना कुशमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखन लाल, चाहना, आकाश नामदेव। और ए लोकगीत के लाने जा एक और चिट्ठिया आई है शिवाजी चौक कटनी से भेजे वाले भैया बहन है अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा और प्रकाश सोनी। इन भैया बहन ने सुन बोचा हो है गर्मी पे जो लोकगीत विमला देवी गुप्ता को गाओ भाओ। तो भैया बहनों सुनो अपन की मन पसंद का जो लोकगीत।

0: देखो भैया बहनों, अब अपन सब जन ने सुनो अपन की मनपसंद को जो गर्मी पहलू गीत विमला देवी गुप्ता को गाओ भाओ। अपन का पसंद भी आओ हुई है और अपने भैया बहन से और भी बतकाओ करें। इसे पहले लेते हैं एक विराम।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: और देखो भैया बहनों, अब अगले लोकगीत के लाने हमारे पास जा पहली चिट्ठी आई है ग्राम रतवास पोस्ट मवई तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। भेजने वाले भैया बहन हैं वीरेंद्र कुमार शुक्ला, कृष्णा भैया शुक्ला, अनुज कुमार शुक्ला, नीलम शुक्ला, सेजल कुमारी और चुन्नी बिटिया। ये लोकगीत के लाने जाए एक और चिट्ठिया आई है गांव बड़भूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से। भेजने वाले भैया बहन है रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा, दुर्गा, परी, मधुबाला, मिलन और स्वर्गीय सुषमा कपूर जी ने। ये लोकगीत के लाने जाए एक और चिट्ठिया आई है गांधीनगर गुरसराय झांसी से। भेजने वाले भैया बहन है एस कुमार सिसोदिया, श्रीमती मिथिला सिरोनिया, सोनम, नितिन, मुकेश, रजनी, गौरव, रोशनी, नितेश, रितेश, आदर्श, चिंटू और कुमारी सौम्या सिरोनिया। ये लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। भेजे वाले भैया बहन हैं अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया अभय एवं कार्तिक तिवारी और समस्त परिवार वाले। ए लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है ग्राम कनाए और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले भैया बहन हैं सत्य प्रकाश सहरवार, ठाकुर दीन, माता दीन, राम हित, राम बाबू, रजनीश, ओम प्रकाश, जयचंद्र, नरेश, दीवांश, राजकुमारी, किरण, बबली, ज्योति और अर्चना। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है उर्मिला पांडे की गाय भाई हरदौल गारी। तो भैया बहनों सुनते हैं अपन की मनपसंद की जा हरदौल गारी।

देखो भैया बहनों, अब अपन सभी जन ने सुनो अपन की मनपसंद गारी हरदौल गारी उर्मिला पांडे की गई भाई, अपन का पसंद भी आई हुई है। और जैसो कि भैया बहनों अपन सभी जने जाना था कि अपन की मनपसंद को कार्यक्रम हम हर मंगलवार का सुनवाऊ थे, और ई कार्यक्रम के माध्यम से अपन को मनोरंजन भी होत और अपन खा उपयोगी नौनी नौनी जानकारी भी अपन खा देत रहते हैं। और देखा थे हमारे पास अगले लोकगीत के लाने कछुच और चिट्ठियां आई हैं, तो इन भैया ने का फरमाइश करी है। अगले लोकगीत के लाने जा पहली चिट्ठी आई है ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है राजा राम अहरवार, राधेलाल अहरवार, शारदा दीपा बैनी बाई सीमानी और निशु प्रवीण अहरवार। एक लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है ग्राम कुड़ेला पोस्ट सिमरिया तहसील घोवारा जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है

भेजे वाले भैया हैं हलकाई यादव, और यही लोकगीत के लाने जाए। एक और चिट्ठी आई है, ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। यही लोकगीत के लाने एक और चिट्ठी आई है, ननौरा श्रीनगर उत्तर प्रदेश से भेजे वाले भैया बहन है बलराम दास अहरवार, श्रीमती कस्तूरी कुमारी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा। इन भैया बहन ने सुनबो चाहो है सविता देवी अहरवार को गाओ भाओ सोहरो, तो अपन जो सुनत है अपन से माफी चाहत है। सविता देवी अहरवार की विवाह गारी अपन को सुनवा रहे हैं, तो अपन सुने।

देखो भैया बहनों, अब अपन सभी जन ने अपन की मनपसंद विवाह गारी सुनी, सविता देवी हरवार की गाई भाई। और एक के संगे अपन की मनपसंद को कार्यक्रम लोक मंजरी पूरा भाव। और जो भैया बहन चिट्ठियां पाते भेजबो चाहते हैं तो अपन हमारा पता लिख लियो। हमारा पता है लोक मंजरी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी छतरपुर, पेन है 471001। इस पते पे अपन का चिट्ठिया पाते जरूर भेजने हैं और अपनी फरमाइश भी लिख के भेजने हैं। हम अपन की फरमाइश और अपन की पसंद के लोकगीत अपन का जरूर सुनवा है। और भैया बहनों, अब अपन खां आज की सीख एक देव चाहत है। वैसा है जैसा ही हम भी वैसा ही तुम भी, और ऊंचा ही मिले खसम भी, जा एक बुंदेली कहावत है। तो बहनों को मतलब जो होत है कि जीवन जोन भैया बहन को जैसो स्वभाव हो, जैसो व्यवहार हो और जैसे गुण हो, वैसा ही उन्हें साथी मिल जाते हैं। मतलब इंसान खां स्वभाव के अनुसार

0: संगति मिलत। तो अपन खा हमेशा ये बात को ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी सोच विचार ऊंची रखें। कभी कभी ऐसा हो जात के मान लो कोई भैया बहन को स्वभाव थोड़ी क्रोधी या जिद्दी झगड़ालू स्वभाव को है और वैसे ही उन्हें साथी में लगाओ तो दो जन की बिल्कुल नहीं बन पाओ और फिर आदमी फिर एक दूसरे का दोष देने लगा। तो अपन खा ये बात को खास ध्यान रखना है कि अपन अच्छी सोच रखें तो अपन साथी भी अच्छे मिले, चाहे संगी साथी हो, चाहे अपना पति हो या पत्नी हो, तो अपन अपने परिवार में अच्छे घुल मिल के रहें, अच्छी सोच विचार के संगे अपन आगे बढ़े और प्रेम एकता अपने परिवार में सद्भाव हमेशा बनाए रखें। और भैया बहनों अभूरे भी रचलवे की सोपन हम बता दें कल के कार्यक्रम। कल पंच भैया ग्राम सभा में सुने धारावाहिक अटकन चटकन को भाग पांच और काव्य पाठ सुने मुकुंदी लाल रेकवार से। और आज की नसीहत आज की सीख हुई है जो ना भावे आप खो देव बहु के बाप खो। और अभी के संगे देव अपनी बहन भुमानी का आज्ञा बहनो राम राम।
1: ग्रामीण बहनों के लिए भी घरनी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम विपरी आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कार्यक्रम सुर्खियों में कुछ पलों बाद हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में सुर्खियों में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका आकाशवाणी में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, इस अत्यंत तो महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिभाग के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री पांच देशों के दौरे के अंतर्गत आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पांच नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। इन सभी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर इस शिखर सम्मेलन में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच हुई वार्ता के प्रमुख बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने वार्ता खत्म होने के बाद जानकारी साझा की, जिसके कुछ अंश हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। अंशु जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस भारत नॉर्डिक समिट के महत्व को आप एक विशेषज्ञ के तौर पर कैसे आंकती हैं और आपके अनुसार इस समिट का सबसे अहम आउटकम क्या रहा?
2: सोनू जी, पहले तो जब हम इस नॉर्डिक क्षेत्र की ओर देखते हैं यूरोप के, तो ये तकनीक और व्यापार में सहयोग की दृष्टि से, ये प्रोफेशनल मोबिलिटी में सहयोग की दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यदि हम नॉर्वे को देखें तो उसे गेटवे टू आर्कटिक कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी जो मैरिटाइम पॉलिसी है उसको बहुत डायनामिक और लचीला बनाते हुए, जहां हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्षमता अर्जित की है, तो वहीं जब हम आर्कटिक रीजन की ओर देखते हैं तो वहां लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको कॉन्फर किया गया। थर्ड नॉर्डिक भारत समिट जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है। यदि हम इस नॉर्डिक समिट को देखें जो भारत के साथ होता है, ये एक बहुपक्षीय ऐसा कूटनीतिक फोरम है जिसमें कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड भारत के साथ जुड़े हैं और ये मिल करके किस तरह से एक जो ऑप्टिक्स बेस्ड बायलेटरल रिलेशंस होते हैं उनको कैसे आउटकम बेस्ड, जो कि टेंजिबल आउटकम बेस्ड रिलेशंस है, उनकी ओर ले जाया जाए, इस पर सतत काम हो रहा है। तो यदि हम पिछले समिट्स को देखें तो 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज, किस तरह से कोविड के बाद हम एक इकोनॉमिक रिकवरी की ओर जाएं, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को कैसे योगदान दिया जाए, इस पर बातचीत हुई थी। जब हम दूसरे समिट को देखते हैं जो 2022 में कोपेनहेगन में

0: उसमें मैरिटाइम इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस था, और थर्ड समिट जो ऑस्लो नॉर्वे में हुआ है, तो इसमें किस तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़े,
1: जी
0: सामुद्रिक जो अलग अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें कैसे सहयोग करें, एआई को लेकर के, फिर एक आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में,
1: जी
0: क्योंकि नॉर्वे के साथ अभी हमने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की है,
1: अंशु
0: तो
1: जी
0: कैसे
1: आप
0: आगे बढ़े,
1: को मैं यहां पर
0: फोकस रहा जी
1: रोकना चाहूंगी, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की आपने बात की है, तो आइए सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें इसके बारे में क्या बताया, फिर चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे।
1: सो बहुत सारे बहुआयामी जो फैसले हुए हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को लेकर और इनोवेशन को बढ़ावा देने को लेकर, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने जो हमें बताया है, आप हमें बताएं कि किस तरह से ये एक सिनर्जिस्टिक है, इन नॉर्डिक देशों की जो क्षमताएं हैं, जो इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भारत की विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाता है। आपको लगता है ये बहुत ही सिनर्जिस्टिक पार्टनरशिप?
0: बिल्कुल सोनू जी, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। यहां एक सिनर्जी है, एक सिम्बायोटिक रिश्ता हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के पास स्केल है, रिसर्च की क्षमताएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, और जहां तक बात होती है सामुद्रिक एक्सप्लोरेशन की, तो हमने पिछले 10-11 वर्षों में, मैंने आपको यही बताया कि हम पहले हमने मॉरिशस से सागर डॉक्ट्रिन हिंद महासागर में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के हम प्रणेता बने, हमने उसकी उद्घोषणा की, फिर हमने उसे महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल कहा, हिंद महासागर के सामुद्रिक क्षेत्र में। अब हम आगे बढ़े हैं, अब हम आर्कटिक की ओर देख रहे हैं, और जब हम इन नॉर्डिक देशों को देखते हैं जिसमें आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, तो हम जब इन देशों की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि इनके लिए आर्कटिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है यदि क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र जो लेवल है, सामुद्रिक लेवल जो है वो लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसकी वजह से इनको खतरा है, और यहां पर भारत एक बहुत सशक्त साझेदार के, सहयोगी के रूप में इनके साथ में खड़ा है। तो इसीलिए जो फोकस है इस समिट का वो इस प्रकार की रेजिलियंट, फ्यूचर रेडी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को इस तरह से आगे लेकर के जाना है जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमुखता दी जाए। तो इसमें सरकार भी और जो इंडस्ट्रीज साथ में जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के दोनों ही तरफ से ये बातचीत हुई है कि क्लीन ग्रोथ होनी चाहिए, क्लीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए, इसमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारत और नॉर्वे ने इसीलिए कल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का उद्घोष भी किया है। तो ग्रीन शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, किस तरह से बेहतर ओशन मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसमें फिर देखिए व्यापार भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाती है, शिक्षा भी आ जाती है, को मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाती है, एक बहुत बड़ा विस्तार का ये पूरा क्षेत्र है जिसकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर भी रहे थे।
1: अंशु जी, जो आप विस्तार की बात कर रही हैं, ये एक लगातार निरंतर प्रयास है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हुआ है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है, फिर इंडिया ईयू एफटीए हुआ उसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो की पार्टनर्स हैं, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है ये जो करार हुए हैं, इसके बारे में सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या बताया।
2: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ

0: महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
1: क्या लगता है आपको अंशु जी, ये जो स्वर्णिम युग की बात करी है, जो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की भी उन्होंने इसी संदर्भ में बात करी कि कैसे हम सब एक चाहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ हो पूरे विश्व में और मल्टीलैटरलिज्म हो, जिसकी वजह से हम सब नेचुरल पार्टनर्स हैं क्योंकि हम सभी इन वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है आज के ऐसे युग में जहां विश्व में बहुत उथल पुथल चल रही है।
2: सोनू जी, जब हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वैश्विक राजनीति में एक फ्लक्स का समय है, संकट का समय है। कोविड-19 की काली छाया से निकले थे तो रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और यदि ये काफी नहीं था तो अभी पश्चिम एशिया में जिस प्रकार से संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, भारत लगातार इसीलिए रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, वैश्विक स्तर पर जो तमाम इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म की बात करता है, नियमों पर चलने की बात करता है। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों को कैसे हम और सशक्त कर सकते हैं, यूएन चार्टर को हम किस तरह से उसका पालन कर सकते हैं, उसको थोड़ा सशक्त बना सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं, ताकि अलग अलग जो ये पश्चिम एशिया के और यूरोप के संकट हैं ये समाप्त हों। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी हम लगातार इस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थितियां बनी हुई देखते हैं, तो ऐसे में जो ये नॉर्डिक के देश हैं, ये आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की या रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात करें तो ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। ये वो देश है जो भारत के साथ लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की मांग करते हैं, यूएनएससी में भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात हम करते हैं उसका समर्थन करते हैं, और भारत जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को ज्वाइन करने की बात हो रही है भारत की, उसमें भारत का समर्थन करते हैं। तो ऐसे में एक मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म, इशू बेस्ड इंगेजमेंट की बात आती है जिसको भारत लगातार प्रमोट करता है, और नॉर्डिक के तमाम देश जो हैं सोनू जी वो भारत का इसमें साथ देते हैं।
1: तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है इसके प्रति जो कमिटमेंट है नॉर्डिक देशों की, भारत की, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये सुनते हैं।
0: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे, और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है।
1: सो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, और एक और एस्पेक्ट है ट्रेड का, आपसी व्यापार का, अंशु जी उसके बारे में आप क्या कहेंगी, जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज के साथ भारत का, उसका पिछले 10 वर्षों में जो विस्तार हुआ है उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
2: बिल्कुल सोनू जी, और यहाँ पर भारत एफ्टा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है, जिसको हम टेपा के नाम से जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम एफ्टा देशों की बात करें तो इनमें आइसलैंड, लिंकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, या नॉर्वे हमारा एक प्रमुख सहयोगी बन के उभरा, और बाकी के जो ये 3 सदस्य देश हैं इनके भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अभी हमारा जो ट्रेड है इन देशों के साथ वो 19 बिलियन यूएसडी से 20 बिलियन यूएसडी तक का होता है, तो इसको ये तमाम देश भारत के साथ मिलकर 2030 तक 30 बिलियन यूएसडी तक ले जाना चाहते हैं, और इसमें एक किस प्रकार से 100 बिलियन यूएसडी का भारत में निवेश हो इसकी बात हो रही है, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज हैं, हम सशक्त हैं, हम सुरक्षित हैं। तो एक हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हम चाहते हैं हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, और वहीं इन देशों को भारत जैसे देश की आवश्यकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो नॉर्वे के पास सबसे बड़ा, यदि हम देखें पूरे विश्व में, तो गवर्नमेंट पेंशन पेंशन फंड है, तो वहां ये एक इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हमारे लिए एफडीआई बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, नॉर्वे को भारत जैसे सहयोगी मिलने की दृष्टि से, प्रोफेशनल्स मिलने की दृष्टि से, देखिए कितनी अच्छी सिम्बायोटिक एनर्जी यहां पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा भारत और फिनलैंड ने अनाउंस किया है कि अभी गांधीनगर गुजरात में सितंबर

0: 2026 में एक वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम को दोनों मिलके साथ में होस्ट करें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: यदि व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो ये एक एफ्टा देशों के साथ और बायलेटरली भी लगातार भारत जो है वो मार्केट एक्सेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, सर्विसेज को, मोबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा है।
1: जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 वर्ष में जो बायलैटरल ट्रेड है नॉर्डिक कंट्रीज और भारत के बीच में वो 4 गुना बढ़ा है और 200% बढ़त हुई है जो इन्वेस्टमेंट भारत में हुई है नॉर्डिक कंट्रीज से। सो अब जो ये बायलैटरल लेवल पर भी स्वीडन के साथ, नॉर्वे के साथ जिस तरह के करार हुए हैं, आपको लगता है कि भारत अब एक बहुत ही आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर के आ रहा है? यहां इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा यूथ टैलेंट है,
0: निश्चित
1: बहुत
0: तौर पर
1: संक्षेप में
0: हम
1: बताएं। जी
0: जी सोनू जी, देखिए पूरे विश्व की जो यूथ पॉपुलेशन है उसका 22% भारत के पास है और जिस प्रकार की परिस्थितियां अपने अपने यहाँ है वो तमाम निवेशक देशों के लिए अति आकर्षण का केंद्र है। यही कारण है कि एफ्टा की आप दृष्टि से देखें, यूरोपियन यूनियन की दृष्टि से देखें, यूरोप के देशों की दृष्टि से देखें, ये भारत में निवेश करने में अपनी उत्सुकता को लगातार बढ़ा रहे हैं
1: सो
0: और
1: बहुत
0: निवेश कर रहे हैं।
1: जी सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। भारत को वहां की उन्नत टेक्नोलॉजी प्राप्त हो रही है, उनको हमारी जो क्षमता है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा बाजार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री अब इटली की ओर रवाना होंगे और हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 400.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोता लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सुनते हैं अमित कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है आरडी वर्मा ने और फिल्म का नाम है बालिका वधु।
4: बड़े अच्छे लगते हैं
5: क्या?

0: आकाशवाणी एट 90
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म घर से ये गीत। गीत गुलजार का है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम में जब सुनी आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने, फिल्म का नाम है बेताब।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म बहार से ये गीत शमशाद बेगम की आवाज में गीत राजेंद्र कृष्ण का है संगीत दिया है एसडी बर्मन ने

कार्यक्रम मिली। जब सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म सीआईडी से ये गीत, गीत मजरू का है, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए मजरू का लिखा गीत शमशाद बेगम की आवाज में। फिल्म का नाम है आरपार, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: और इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मिडवे पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार संध्या कुछ ही पलों बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में

0: भारत के राजदूत वाणी सर राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसर्स यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रूकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के

0: राज्य में शामिल हो रहे हैं।
1: ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स।
2: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाली आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 रूपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी

0: तकनीकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या

0: मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ दिस समिट।
1: ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे। और हमारे बीच इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी, और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड्स, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे।
0: So the Prime Minister, you know, outlined what a vast connection there is between the two sides, and it has developed over the years, and the specific strengths of each country have been kept in mind when forging these partnerships. How important do you think, you know, this viewpoint is, that what he spoke about, trusted solutions for the whole world? How important is this inclusive concept in today's tumultuous times?
2: Tonuji, you have included a very significant point in this whole discussion, and we need to understand that repercussions of climate change not only impact countries like India or for that matter Nordic region, but it's a big challenge for the entire world. And when we, in particular, when we look at these Nordic countries, because of their geostrategic location, as Norway is also known as gateway to Arctic region, any rise or dangerous rise in sea levels would definitely bring in an existential crisis for these nations. So that's where green transition and adopting clean technology for sustainable development is a prioritized, it's a focused area for these nations. On the other hand, India has been contributing on different multilateral platforms in the area of climate change containment, and that's where India has been, you know, reflecting the voice of not only Nordic nations but other nations also who might face this kind of existential crisis because of climate change. And that's where the central focus of this summit was on building resilient, future-ready economies through sustainability, wherein all the states who participated, all the Nordic nations and India, reinforced their commitments to clean growth, highlighted by India and Norway, who yes. upgraded their bilateral ties to green strategic mm-hmm. partnership to yes. collaborate heavily in the area of clean energy, green shipping, mm-hmm. and better, effective, holistic ocean management.
0: Absolutely. And also the Prime Minister spoke about the golden era of partnership, which has started since October 2025 with the Trade and Economic Partnership Agreement and India-EU Free Trade Agreement. Let's listen into what he said.
1: अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार हैं। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं।
0: Some statistics show that how our partnership has been growing in last 10 years. Bilateral trade grew 4 times, and the investment in India from Nordic nations has grown 200% in the last 10 years. You think this is going to now increase exponentially with all these efforts being made by the Indian government and the Nordic nations?
2: Definitely, Sonuji, and this is another very important prioritized area for both the sides, wherein trade, investment and different economic agreements have brought together Nordic nations, or for that matter EFTA nations and India together. Also in this India-Nordic summit, the discussions also included the increase in momentum between India-EFTA nations. EFTA nations include Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland.

0: 만탄.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं, 30% से ऊपर निर्यात में और 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो
1: जी।
2: और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है, उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है, इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है, वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है, लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी, और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पे सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है। इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
2: आपने जो तीन खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़े अपने उत्पाद में विविधता लाएं और ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं, आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद

0: बनाएंगे तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी। इसका फायदा क्या है और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पर अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त है और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये आने वाले दिनों में अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
0: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड एसएससी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है,
1: आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या है जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7-7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
0: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पे छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है जी। अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास

0: मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का 2 बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से यह पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का
1: जी।
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं? अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ न कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास है जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दें। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता कि आप कौन है और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते हैं तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला है। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। मन भावन लेकर उपस्थित हूँ मैं आपका मित्र इमरान खान, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मन भावन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म टाइगर जिंदा है से ये गीत आतिफ असलम की आवाज में। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत दिया है विशाल शेखर ने। और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं ग्राम बगबड़ुआ पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम ने। अगला पत्र है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और नवीन शर्मा का। अगला पत्र है पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह मध्य प्रदेश से प्रदीप ताम्रकार, राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, पारस ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, अनन एवं समस्त ताम्रकार परिवार ने। अगला पत्र है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिमा नूर। छत्तीसगढ़ देवरी भाटपारा से गुन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री का। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवगढ़ कटई से नारायण दास वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा का। बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी का। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, बाहु मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। मस्तानशाह कॉलोनी छतरपुर से असरार अहमद खान, साजिदा परवीन, आफिया परवीन, खुदेजा खातून, अब्राहम अहमद। मीरा रोड महाराष्ट्र से फातिमा बेग, मिर्जा इस्माइल बेग, अरहम बेग और अलीशा बेग ने। हनुमान टोरिया के पीछे छतरपुर से आकाश खरे, आग्रह खरे, प्रीति रत्नानी और उनके साथियों का। और कुछ लाइव ईमेल भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार ने। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया का। पदमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीतीश शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बैन शाह, राजेंद्र जी शाह का। अगला ईमेल है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। अगला ईमेल है मामुलबाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने और निवृत्ति आड़ुकर। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया का। और ये अगला अफजल ताज का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: कार्यक्रम में जब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जीनियस से ये गीत। गीत कुमार का है, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम में जो गीत आप सुनने वाले हैं उसके लिए कुछ पसंद हमारे पास आई है पत्रों के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से। पहले पत्र पढ़ लेते हैं। यह है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस वसीम अकरम आरएस आरएस वसीम समीम अकरम ममता रानी शर्मा बच्चू शेख बेगम इशरत इकरम रुबीना वसीम नदीम अकरम अमन अकरम पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख का। कोहात बिहार से शैफ जफर हसन और नरगिस जफर का। नूर महल महसूल से हुमैरा नाज सुमैरा नाज अबीहा नाज अरहान बाबू हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू का। अगला पत्र है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा।

ग्राम लोहरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे का। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। आदर्श रेडियो श्रोता संघ ग्राम मृदला महुबा से रामजीवन राजपूत, राममिलन भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और ऋषिकांत राजपूत का। पटेरा तहसील पटेरा जिला दमोह मध्यप्रदेश से प्रदीप ताम्रकार, श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार, पारस ताम्रकार, आनंद ताम्रकार, समस्त ताम्रकार परिवार ने। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार। और ग्राम खड़ीचारा जिला अशोकनगर से आशाराम, हरिओम, सचिन, रवि, रागनी, रोशनी, शुभ, सौरभ, गणेश, रोहन एवं समस्त रजक परिवार का। ग्राम फ्रांसी से राजकुमार डुड्डी, सरजीत सिंह डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी। हाशी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू का। और कुछ ईमेल भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं। अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक, ज्योति शाक और सक्षम शाक का। पाढ़र कड़वा से अनिल, उषा, अनुश्री। बलहर शहर से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े और एकलव लोढ़े का। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी का। तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। कुछ भुज से जगदीश सोनी, नंदिनी, पारस और प्रतिमा देवी का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म रुस्तम से ये गीत आतिफ असलम की आवाज में। शब्द रचना मनोज मुंतशिर की है, धुन तैयार की है आर्को ने। श्रोताओं, ये जो गीत आप सुनने वाले हैं उसके लिए पत्र और ईमेल हमारे पास आए हुए हैं। यह पहले ईमेल पढ़ लेते हैं। पहला ईमेल है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयपान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार का। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इसप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर का। सौराष्ट्र राजकोट से जुली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी का। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर और आरव और अर्पिता का। गुमला झारखंड से एसएम जाबेद, शगुफ्ता और अंजुम का। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रीति बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का। और कुछ पत्र भी हमारे पास आ रहे हैं। बेड़ी से हुकुम कर्मा।

कर, सुनीता कर्माकर, हार्दिक कर्माकर और हार्दिक कर्माकर और तनु कर्माकर का। अगला पत्र है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से यह बत्ता परिवार का पत्र हमें प्राप्त हुआ है। यह है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता का। अगला पत्र है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी संवाद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद साकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री का। ग्राम पोस्ट सौजना उत्तर प्रदेश पत्र है वह प्राप्त हुआ है घनश्याम, कालीचरण, रामश्री, संदेश, संदीप और समस्त रजक परिवार का। अगला पत्र है गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर चौधले और आरती चौधले का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

कार्यक्रम में जब सुनिए फिल्म विक्की डोनर से ये गीत आयुष्मान खुराना की आवाज में। गीत आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का है, संगीत दिया है रोचक कोहली ने। और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार का। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। बिलसरैया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गुल्डी, दीप्ति। रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गुल्डी, दीप्ति, अनुज और ओमजी चक्रवर्ती का। करोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान का। छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जलौन से अमित तिवारी, श्रीमती पूजा तिवारी, पंडित राम बिहारी शास्त्री, आशा तिवारी, राजा भैया, अभय एवं कार्तिक तिवारी और समस्त तिवारी परिवार का। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले का। और कुछ ईमेल भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार है। ईमेल है चंद्रनगर सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का। ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मणिराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल का। अगला ईमेल है बस स्टैंड के पास राजनगर से अली राजा हुसैन, सद्दाम हुसैन, सिद्दीक हुसैन, फारूक हुसैन और राजू हुसैन का। अगला ईमेल है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश का। ये पत्र हो चुका है। अगला पत्र है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, श्रीमती नंदा, हनुमान बोड़खे और उत्तम चामदाड़े का। अगला ईमेल है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह का। कालका से सुभाष चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मन भावन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में फिल्म रेस से ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है प्रीतम ने, और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं बड़बूजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल एवं मिलन और ओम प्रकाश का। अगला पत्र है प्रेम रेडियो श्रोता संघ ग्राम बनगांव तहसील पटेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मोहन यादव, सुषमा यादव, संगीता यादव, गीता यादव, कविता यादव, गोविंद यादव, दिवाकर यादव और उनके समस्त परिवार का। जिला रायसेन खापरखेड़ा से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू और आरती ममता गुमती का। बौरसाना नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू का। मोहल्ला हवाई यान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, अयान, हिना कौसर और शबाना नास का। दोहा कतर से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और डेलारी रोड चौधरी वाला मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख हबीबुर रहमान, शेख अब्दुल रहमान का। यादव मोहल्ला संवाद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

मन भावन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं बरेली की बर्फी से ये गीत आरको की आवाज में। गीत और संगीत आरको का है। कार्यक्रम में जो गीत अब आप सुन रहे हैं उसके लिए कुछ ईमेल और पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। वह पहले ईमेल पढ़ लेते हैं। पहला ईमेल है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया का, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी का, डुमरराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा का, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी का, पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। और इस गीत के लिए हम तक पत्र भी पहुंचाए हैं। मलोड कैंप पंजाब से सीता, सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी का, पुरानी टोली जसपुर नगर

अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा का, रामलीला मैदान सचैडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु गीत, अनमोल चानवी, शिवांश और अभिजीत सिंह सांगा का, रेलवे कॉलोनी बटंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक का, ग्राम महसवाड़ी मलकापुर महरा से शत्रुघ्न, डॉक्टर वाल्मीक, नेनाजी, स्वप्निल और अजय का, टाउनशिप सेक्टर एक भिलाई नगर से ये पत्र है श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर का, श्रीमती अनुश्री श्याम कुंवर का, अशोक श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर का, ग्राम चौहलदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल का, राजपूत कृषि फॉर्म ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, नीरेंद्र सिंह, गुरु महाराज, गौरव सिंह और जानवी राजपूत का, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी, करुला मुरादाबाद से मेराज अंसारी और वसीम अंसारी का लीजिए सुनिए ये गीत।

कुछ यादव का है, संगीत दिया है अमाल मलिक ने। तो लीजिए सुनिए ये गीत। और इस गीत को सुनने के लिए हम तक पत्र पहुंचाए हैं ग्राम खजरी तहसील पलेरा जिला मध्य प्रदेश से राजेंद्र कुमार अहरवार, अजय, उमेश, सुनील, दिनेश, जितेंद्र, आकाश, अनिल, रामलाल, रोशन, राजकुमारी, शगुन, श्रीमती शीला देवी और संपूर्ण परिवार का। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्माइलपुरा संवाद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब कतरीका, ग्राम पजौनिया तहसील कौच जिला जालौन से सतेन चंसौलिया का, दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनूर अकुला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर का, मेन रोड बनौसा दरियापुर जिला अमरावती महाराष्ट्र से यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान, माधवी चौहान का, कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, श्रीमती शकुंतला, मनुजपाल सिंह, लखनपाल सिंह, दिनेशपाल सिंह, कुमारी कविता, बेमित्रा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और श्रद्धा साहू का, नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर मध्यप्रदेश से दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायणदास कुशवाहा, इंदू देवी, भागीरथ कुशवाहा, ममता देवी, यश कुशवाहा, राज कुशवाहा, आयुष कुशवाहा और रक्सी राम का, रंभाजी नगर केड़गांव से भाऊ साहेब, अक्षय, जयकुमार, हरीश, रंजना और चंदन का, देवरी भाटपारा से गुन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री का। और कुछ ईमेल भी हमें प्राप्त हुए हैं, वह कुछ इस प्रकार है। दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल का, बडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का। अगला ईमेल है हिन्दुस्तान रेडियो श्रोता मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। अगला ईमेल लाइव ईमेल हमें प्राप्त होते जा रहे हैं। अगला ईमेल है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह का। ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता का। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रुता, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल का। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का मन भावन समाप्त करने की अनुमति दीजिए आपके अपने मित्र इमरान खान को, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों एवं ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, समाचार कुछ ही पल बाद हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षो में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200%.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन